तो इस भोर की बेला में मन में भक्ति, हृदय में प्रेम और कदमों में विश्वास लेकर चलिए। दिशा सही हो, मन में शक्ति हो और चेहरे पर मुस्कान हो, तो जीवन की हर गली हमें मंजिल की ओर ले जाती है। आपकी सुबह मंगलमय हो, मन प्रसन्न रहे और आज का हर पल किसी ना किसी के जीवन में खुशियों की वजह बने। इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 19वीं तिथि तदनुसार 10 सितंबर 2026 सुबह के 5:53 और 33 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए जानते हैं आज आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर कौन से कार्यक्रम सुन सकेंगे। प्रातः 6:10 का समय रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम अर्पण का।

6:44 का समय रहेगा श्री रामचरित मानस कांड का। 7:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात। 8:45 का समय रहेगा प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी का।

10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम दिल का मेलबॉक्स का। 11:10 पर आप सुन सकेंगे प्रोग्राम तस्वीर। दोपहर 12:10 का समय रहेगा प्रोग्राम घर आंगन का। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कलाकार बेमिसाल।

2:30 का समय रहेगा प्रोग्राम संगीत.com का। 3:10 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मन भावन। शाम 5:10 का समय रहेगा प्रोग्राम गाते गुनगुनाते का। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम सांझ ढले। 8:10 का समय रहेगा प्रोग्राम मधुरिमा का। 10:30 का समय रहेगा प्रोग्राम हर श्रृंगार का। और 11:40 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 6 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISET संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल

0: कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनाधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। अमेरिका ओपन में अमेरिका की बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला तीसरी सीड जेसिफा पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Nina Rakel. Union Cabinet has approved 8 multi-tracking railway projects at total cost of over 20,800 crore rupees. Briefing media after the Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said of these projects, 3 multi-tracking railway projects have been approved at a total cost of 10,783 crore rupees. Mr. Vaishnav said these projects cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, increasing the existing network of Indian Railways by about 656 kilometers. Mr. Vaishnav said that these projects are Kharagpur to Jharsuguda, 4th line, Katni to Pendra Road, 4th line, and Bilaspur to Pendra Road, 3rd line. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav further informed that the other 5 multi-tracking projects have been approved at a cost of nearly 10,021 crore rupees. The projects cover 17 districts across the states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and Telangana, increasing the existing network of Indian Railways by about 540 kilometers. These projects are planned to be completed up to 2029-30. Mr. Vaishnav said these routes include Arakonam to Renigunta, 3rd and 4th line, Whitefield to Bengarapet, 3rd and 4th line, and doubling of Hosur to Umalur line. The approved multi-tracking projects will enhance connectivity to approximately 2,100 villages having a population of about 52 lakhs. Mr. Vaishnav informed that the government has decided to four-lining or quadrupling of all the 7 high-density railway corridors. These routes are Delhi to Howrah, Mumbai to Howrah, Delhi to Mumbai, Delhi to Guwahati, Delhi to Chennai, Howrah to Chennai and Mumbai to Chennai route. These routes cover 11,000 kilometers railway networks and four lining of 2,000 kilometers has been completed. These approved projects for

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हो गया है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण का, और आज अर्पण में आपके साथ हूं मैं सुरति। सुप्रभात। आइए प्यारी सी सुबह की शुरुआत करें भक्तिमय अंदाज में एक बेहतरीन भजन के साथ। जय श्री राम।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 MHz पर। मेरे यानी सुरती के साथ और ये है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्पण। खुद को ऐसा बनाइए जहां पर आप हो वहां सब आपको प्यार करें, जहां से आप चले जाएं वहां सब आपको याद करें, और जहां आप पहुंचने वाले हो वहां सब आपका इंतजार करें।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: कदम छोटे हो या फिर बड़े, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चलते रहना बहुत जरूरी है।

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: अक्सर लोग एक दूसरे की तुलना किसी न किसी से करते हैं, लेकिन हमें अपनी तुलना स्वयं किसी शांत और विनम्र इंसान से करनी चाहिए। तभी तो हम जान पाएंगे कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मेरे यानी सुरति के साथ, और यह भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्प।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: जो लोग बहस करते हैं उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो वाद विवाद है वो हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान करता है और इससे सिर्फ और सिर्फ हम अपना समय जो है नष्ट करते हैं। इसलिए इन चीजों को दूर करके अपने पीस ऑफ माइंड को बनाए रखिए।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

और इसी के साथ अर्पण में फिलहाल बस इतना ही। वक्त हो गया है अब श्री रामचरितमानस गान का। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस का अगला भाग एफएम गोल्ड पर।

अनुज लक्ष्मण तथा भार्या सीता के साथ पर्णकुटी में निवास करते हुए श्रीराम इस प्रकार सुशोभित हैं, जिस प्रकार इंद्र अपनी पत्नी शची तथा पुत्र जयंत के साथ अमरावती में सुखपूर्वक निवास करते हैं। किंतु उधर अयोध्या पर आसन्न शोक का आभास पशु पक्षियों की उस व्याकुलता से मिलता है जो निषाद राजगुह ने वापस आकर देखा। रथ के साथ सुमंत्र को आकुल देखकर निषाद राजगुह को अत्यंत दुख हुआ। निषाद राज को अकेले लौट आया देख सुमंत्र हा राम हा लक्ष्मण हा सीते कहकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जुते अश्व दक्षिण दिशा की ओर देख देख कर जिधर उन्होंने राम को जाते देखा था जैसे करुण हिन हिनाहट में अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे हैं। चारा पानी छोड़ उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। निषाद राज ने सुमंत्र को पंडित और ज्ञानी संबोधित करके समझाया, अब विषाद छोड़ विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। रथ पर बिठाए जाने के बाद भी शोक से शिथिल हुए सुमंत्र से रथ हांका नहीं जाता। घोड़ों को शोकातुर देख निषाद राज भी विह्वल हो गए। उन्होंने अपने चार सेवक सारथी के साथ कर दिए जो रथ को अयोध्या की ओर ले चले।

0: आप सभी सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। इसी के साथ वक्त हो गया है समाचारों का। सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और ठीक 7:10 पर सुनना ना भूलिएगा अपना मनपसंद प्रोग्राम गोल्ड सुप्रभात मेरे यानी सुरती के साथ। फिलहाल आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नव राज्येषु 28,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, अनुमोदिताः। एतासु परियोजनासु प्रायः 96.1 किलोमीटर मिताः रेलमार्गाः सम्मिलिताः भविष्यति। एताभिः रेलसंपर्क व्यवस्थायां परिष्कारः, विद्यमानमार्गेषु यातायात सम्मर्दस्य न्यूनीकरणं तथा यात्रिणां मालवाहनस्य च द्रुततरगमनं सुकरं भविष्यति। एतासां परियोजनानां 29.2 30.2 पूर्णत्वस्य लक्ष्यं निर्धारितमस्ति। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् केन्द्रीय मंत्रिमण्डलेन गृहीतानां निर्णयानां विवरणं प्रदत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मंत्रिमण्डलेन तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्णाटक, तेलंगाना राज्येषु 17 जनपदेषु विस्तृताः 5 रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अनुमोदिताः। एताभिः परियोजनाभिः विद्यमान भारतीय रेल जाले प्रायः 40.5 किलोमीटर मितः रेलमार्गः वर्धिष्यते। एतासां 5 परियोजनानां अनुमानित व्ययः आहत्य 21.10 कोटि रूप्यकाणि अस्ति। श्री वैष्णवः उक्तवान् यत् प्रशासनेन 17.10 कोटि रूप्यकेभ्यः अधिक मूल्याः 3 अन्याः रेल बहुमार्गीकरण परियोजनाः अपि अनुमोदिताः। एताः परियोजनाः पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यानां 14 जनपदेषु विस्तरिष्यन्ते। एकस्य प्रश्नस्य प्रत्युत्तरे श्री वैष्णवः संसूचितवान् यत् मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा आगामी वर्षे प्रारप्स्यते। भारतम् 48 विश्व कौशल प्रतियोगितायां प्रथमवारं 11 नूतन कौशल श्रेणीषु सहभागं करिष्यति। इयं प्रतियोगिता अस्य मासस्य 22 27 दिनांक पर्यन्तं चीन देशस्य शांघाई नगरे आयोजयिष्यते। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालयेन संसूचितं यत् टीम

0: स्किल इंडिया इत्येतत् चतुष्षष्टि कौशलेभ्यः त्रिषष्टि कौशलेषु प्रायः सप्तति प्रतियोगिताभिः युक्तेन दलेन सहभागं करिष्यति। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अद्यावधि विश्व कौशल प्रतियोगितायां इयं भारतस्य बृहत्तमा विविधता पूर्णा च सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स देशेभ्यः महिलाभ्यः अवसर विस्ताराय तथा अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे महिला उद्यमिनीनां महिला नेतृत्वाधीनानां च उद्यमानां प्रोत्साहनाय मिलित्वा कार्यं कर्तुम् आह्वानं कृतवान्। श्री गोयल बलं दत्तवान् यत् महिला नेतृत्वाधीनेभ्यः उद्यमेभ्यः अन्ताराष्ट्रिय व्यापारे अवसराणां लाभं स्वीकर्तुं स्वकीयां सहभागितां च वर्धयितुं आवश्यकं सहकार्यं मञ्चश्च प्रदातव्यौ। ग्रामीण विकास मंत्रालयस्य अन्तर्गतं भूमि संसाधन विभागः अद्य डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम 3.0 इत्यस्य कार्यान्वयन संबद्धान् दिग्निर्देशान् प्रकाशयिष्यति। मंत्रालयेन सूचितं यत् आगामी DILRMP 3.0 इत्येतत् 50.565 कोटि रूप्यकाणां अनुमानित वित्त व्ययेन केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना रूपेण कार्यान्वितं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन ओडिसायाः पृथक् पृथक् स्थलेषु अद्य प्रबलाति प्रबल वृष्टेः संभावनां दृष्ट्वा रक्तवर्ण परा संचेतना प्रसारितास्ति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1,021 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये अभियान निगम के सभी 12 जोन में

चलाया जा रहा है। एमसीडी ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी एमसीडी ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलुओं पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सुबह सुबह का वक्त बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भरा होता है क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है। ऐसे में अगर हम बात करें बड़े बुजुर्गों की तो भाई उन्हें तो बहुत जरूरी है अपनी मॉर्निंग अच्छा करना अगर वो चाहते हैं खुद को हेल्दी रखना, एक्टिव रखना और साथ ही साथ बेहतरीन स्वास्थ्य के साथ एक अच्छे लाइफस्टाइल को जीना। तो फिर उन्हें कुछ चेंजेस लेकर आने होंगे अपनी मॉर्निंग में। वो चेंजेस क्या है? सुबह जल्दी उठना और हर दिन एक ही समय पर उठने की आदत। दिन की शुरुआत गुनगुने ग्लास के पानी से करनी होगी जिससे कि पाचन तंत्र बेहतर रहे। और अब जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो कर नहीं सकते, इसलिए बेड पर या फिर ज़मीन पर हल्की स्ट्रेचिंग, योग या प्राणायाम करें और इसके बाद ताज़ी हवा में 15 से 20 मिनट टहलने जाएं। साथ ही साथ सुबह सुबह जो नाश्ता लेते हैं वो पौष्टिक हो जिसमें कि फाइबर और प्रोटीन भरा हो। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं रूटीन बेहतरीन बनाने के लिए? अखबार, किताबें पढ़ें या फिर ऐसे समाचार देखें जो उन्हें पसंद है। बागवानी करें, संगीत सुने, पूजा पाठ, हल्की फुल्की कला और बुनाई ये भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसे मेंबर्स जिनके साथ उन्हें बात करना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स, उनसे बात करें, फोन पर हालचाल लें ताकि उन्हें जो है बेहतरीन महसूस हो और उनके सुबह की शुरुआत जो अगर अच्छी होगी तो पूरा दिन भी उनका बेहतरीन होगा। और ये वादा करना है कि खुद को एक्टिव रखना है।

0: ये इतना प्यारा गाना है कि दिल करता है कि यूं ही इसको यूं ही सुनते रहें, गुनगुनाते रहें। खैर, वक्त हो गया है इजाजत लेने का, वक्त हो गया है अब समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज सवेरे का। तो गोल सुप्रभात में फिलहाल बस इतना ही। आप सुनेंगे कार्यक्रम आज सवेरे आप ठीक 8:45 पर। म्यूजिकल दिलगी में होगी ढेर सारी बातें।
1: समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।

0: सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है, हर सुबह जिंदगी को एक नई सांस देती है, कहती है बीती रात का अंधेरा अब बीत गया, जो थमा हुआ था कल तक वो सफर फिर जी उठा। जी हाँ, हर सुबह अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। रात कितनी भी लंबी क्यों ना रही हो, सूरज की एक किरण उस अंधेरे को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का हौसला दे जाती है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, थकान भी होती है, लेकिन हर नई सुबह हमें याद दिलाती है कि रुकना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहना ही असली जीत है। कई बार सिर्फ ये सोच लेना कि आज का दिन कुछ बेहतर लेकर आएगा, हमारी पूरी दिनचर्या को बदल देता है। तो आइए इस सुबह का स्वागत करें नई ऊर्जा के साथ, नए विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आज का दिन हमें कुछ नया सिखा कर जरूर जाएगा। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज सवेरे कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हूँ वैष्णवी आपके साथ और मेरे साथ है मेरे सहयोगी नीना आरेकल। हेलो नीना।
1: हेलो वैष्णवी। इंडीड इट्स अ ब्राइट न्यू डे एंड सिंपली बी प्रेजेंट इन द मोमेंट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द पीपल यू लव, दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट। And a very warm welcome to all our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashvani Network. We bring to you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we give the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 10th of September 2026. Let's begin with the headlines, Vaishnavi.
0: Jai bilkul. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। श्री मोदी ने बताया कि ये 5 रेलवे परियोजनाएं दक्षिण भारत में बेहतर रेल संपर्क को

0: बढ़ावा देगी और इससे लाखों लोगों को लाभ होगा।
1: Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said, India has focused on empowering women financially, socially, and through education, skills, and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth.
0: वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने देशों को वित्तीय अपराधों के लिए गेमिंग और विभिन्न जुआ प्लेटफॉर्म के बढ़ते दुरुपयोग के बारे में चेतावनी दी है। कार्यबल ने कहा है कि अपराधी जुआ प्लेटफॉर्म का उपयोग करके बिना जुआ खेले ही धन का लेन देन कर रहे हैं। कार्यबल ने अवैध और बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन जुआ को भी एक बड़ा जोखिम बताया है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के नए जोखिम असंकेतक सरकारों, नियामकों और व्यवसायों को संदिग्ध लेन देन का पता लगाने और धन शोधन, आतंकवादी वित्त पोषण और गेमिंग तथा जुआ क्षेत्रों से जुड़े अन्य वित्तीय अपराधों से निपटने में मदद करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।
1: सिक्किम मेड फीचर फिल्म नोमाहांगमा, directed by filmmaker Niyara Subba and produced by H.M. Subba, has been selected in 2nd Nepal Indigenous Film Festival NIFF 2026, scheduled to be held in London, United Kingdom on 27 September, a report.
2: The 90-minute feature film Numahangma is based on the real-life journey and experiences of producer H.M. Subba, portraying the struggles, challenges and perseverance of a woman as she navigates family responsibilities and works her way towards success. The film premiered at Vajra Cinema Hall in Gangtok and has since embarked on a journey through various film festivals. Previous to this recognition, Numahangma won both Best Director and Best Film, with Niraya Subba receiving the Best Director Award in 2nd Yakthong Cine Awards International 2082, which took place in Nepal on 8th February. Moinak Chatterjee, Akashvani News, Gangtok.
0: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने कल ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में आधार फेस ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट और चेहरे के सत्यापन के लिए सैंडबॉक्स जारी किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि इन नए टूल की मदद से बैंक, फिनटेक कंपनियां और अन्य संगठन अपने मोबाइल ऐप में आधार आधारित चेहरे के सत्यापन की सुविधा को आसानी से विकसित और जांच सकेंगे। फेस ऑथेंटिकेशन किट सुरक्षित और एकीकृत प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध कराएगी। वहीं सैंडबॉक्स के जरिए डेवलपर्स किसी सेवा को शुरू करने से पहले ही चेहरे की तस्वीर लेने, व्यक्ति के जीवित होने की जांच, पहचान सत्यापन और अलग अलग परिस्थितियों में सिस्टम की जांच कर सकेंगे।
1: India has intensified its humanitarian assistance to Nepal in the wake of devastating flash floods, delivering over 130 tons of relief material and deploying 54 expert personnel to support search, rescue and forensic operations. The Indian Embassy in Nepal said yesterday that an 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies landed in Kathmandu, marking the latest shipment in a continuous aid effort launched on August 26, 2026. In the U.S. Open, Americans Ben Shelton and 11-seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Aryna Sabalenka will face 3rd-seed Jessica Pegula, while 4th-seed Coco Gauff will play Elena Rybakina of Kazakhstan.
0: श्रोताओं, अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई है। तो शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आज की खबरों में क्या कुछ खास है, आइए जानते हैं। दिल्ली नगर निगम ने शहर के सभी 12 जोन में खतरनाक इमारतों, अवैध निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान व निर्माण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अभियान में अब तक 34 जगहों पर इमारतों को गिराने की कार्रवाई, 17 संपत्तियों को सील करने और 22 कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की गई। पीजी इमारतों के सर्वे के दौरान अब तक 1,243 ऐसी इमारतों की पहचान हुई है।

0: जहां पीजी की सुविधाएं चल रही हैं और करीब 24,000 लोग रह रहे हैं। नगर निगम ने कहा है कि इन इमारतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। जहां भी नियमों का उल्लंघन, इमारत की कमजोरी, अवैध निर्माण या सुरक्षा से जुड़ी समस्या मिलेगी, वहां नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
1: Union Minister of State, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Ministry of Social Justice and Empowerment, B.L. Verma, visited the Southern Regional Laboratory of the Bureau of Indian Standards, Chennai, yesterday. The minister interacted with the officials of BIS and appreciated and dedicated efforts of the organization in safeguarding consumer interests through standardization, product certification, hallmarking and the compulsory registration scheme. He highlighted the significant role of BIS in ensuring that consumers receive quality, safe and reliable products conforming to Indian standards. Some more from Chennai. Intellect Design Arena has set its sights on 5,000 crore rupees in revenue over the next 3 years, driven by a range of newly built AI solutions and targeting new customer segments, including global capability centers and fintech companies, according to the company's founder and chairperson, Arun Jain. The fintech company is ramping up its product portfolio with AI offerings, which include a platform for governance and unifying different enterprise data systems. He said that company serves bank and financial institutions and is expanding into new areas and geographies with its AI products.
0: और अब आगे बढ़ते हैं, मुंबई की ओर रुख करते हैं। महाराष्ट्र में इस बार गणेश उत्सव को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक खास पहल होने जा रही है। महाराष्ट्र के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से आज इको फ्रेंडली महागणेश प्रतिमा कार्यशाला का आयोजन नवी मुंबई के सिडको सेंटर में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। इस विशेष कार्यशाला में करीब 7,000 स्कूली छात्र और नागरिक एक साथ पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमाएं तैयार करेंगे। महाराष्ट्र में अपनी तरह की पहली और महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।
1: वैष्णवी, नाउ वी मूव ऑन टू बेंगलुरु। The Department of Collegiate Education, in collaboration with the National Institute of Mental Health and Neurosciences, NIMHANS, and regional partner institutions, has completed a statewide orientation program on safeguarding student mental health. The initiative, conducted in Bengaluru, Kalaburagi, and Dharwad, covered more than 420 government first grade colleges and over 800 principals and mental health safety coordinators. The programs focused on recognizing mental health concerns, suicide prevention, institutional support systems, tele support services, and digital mental health resources. The initiative was undertaken in accordance with the Supreme Court guidelines, the mental health policy, and the Government of Karnataka's directions on protecting students' mental health. Some more from Bengaluru. Bangalore Water Supply and Sewage Board BWSSB Chairperson Dr. N. Manjula has directed officials to record details of all repairs carried out following public complaints on the board's geographic information system platform. She said the data would help identify recurring problems and pipelines requiring frequent repairs, enabling permanent data-driven solutions. During an inspection of the North Zone, Dr. Manjula reviewed pipeline works at Kattiganahalli and the sewage treatment plant STP under construction at Kogilu Lake.
0: खाने पीने की दुकानों, होटलों और रेस्तरों की जांच के बाद राज्य औषधि नियंत्रण विभाग ने नकली दवाओं के गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बुधवार को विभाग ने कोलकाता पुलिस की प्रवर्तन शाखा के साथ मिलकर बड़ा बाजार इलाके के कई दवा दुकानों, वितरकों और थोक विक्रेताओं पर छापेमारी की। अधिकारियों ने हर दवा के बैच नंबर की जांच की और कारोबारियों के जरूरी दस्तावेजों की भी गहन जांच की। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यह अभियान मिलावटी या मानक के अनुरूप नहीं होने वाली दवाओं की बिक्री का पता लगाने के लिए चलाया गया। नीना, ये कार्रवाई लोगों की सेहत और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है आजकल के समय में, क्योंकि नकली या मिलावटी दवाएं सीधे उनकी जान और स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती हैं।
1: यस, सेफ्टी फॉर ऑल इज प्रायोरिटी। Now we move on to Hyderabad. The 9th edition of Cold Chain Unbroken CCUB 2026, South Asia's premier platform for temperature-controlled logistics, commenced yesterday at Novotel Hyderabad Airport. Airport. The two-day event centered on the theme Global Multimodal Connectivity Across Air, Sea and Land for Pharma, Perishables and Beyond gathers over 400 global leaders across pharmaceuticals, aviation, shipping and cold chain sectors to discuss building integrated, resilient supply chains. The summit covers critical topics such as trade corridors, maritime logistics, quick commerce demands and sustainable technologies. The event will conclude with Cold Chain Excellence Awards, recognizing outstanding achievements and innovation across the temperature-controlled logistic ecosystem.
0: चलिए अब जान लेते हैं आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। राजधानी दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं आर्थिक राजधानी मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। यहां अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत के महानगर कोलकाता में दोपहर बाद या शाम के समय बारिश होने की संभावना है। बात करें तापमान की तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। और नीना, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में कैसा मौसम रहने वाला है?
1: Yes, Vaishnavi, Chennai will have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature will be around 27 degrees Celsius, while the maximum is expected to be around 36 degrees Celsius. Bengaluru will have a partly cloudy sky. The minimum temperature will be around 20 degrees Celsius, while the maximum may reach 31 degrees Celsius. Hyderabad will also have likely to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 25 degrees Celsius, while the maximum may reach 32 degrees Celsius.
0: और अब इतिहास के पन्नों में 10 सितंबर की तारीख देश दुनिया की कई अहम घटनाओं की गवाह रही है। तो आइए एक नजर डालते हैं आज के दिन इतिहास में दर्ज कुछ प्रमुख घटनाओं पर। आज ही के दिन 1846 में अमेरिकी आविष्कारक एलियस होवे ने सिलाई मशीन का पेटेंट कराया था। इस एक आविष्कार ने कपड़ा उद्योग की तस्वीर पूरी तरह बदल दी थी और घर घर में कपड़े सिलने का तरीका आसान बना दिया था।
1: इन 1608 John Smith became president of the governing council of Jamestown, Virginia. In 1813, the Battle of Lake Erie was fought during the War of 1812, resulting in a U.S. naval victory. In 1846, Elias Howe was granted a U.S. patent for his sewing machine design. In 1939, Canada declared war on Nazi Germany, formally entering World War II.
0: वही 1960 के बाद करें तो इथियोपिया के धावक एबेबे बिगिला ने रोम ओलंपिक में मैराथन का स्वर्ण पदक जीता था। वे उप सहारा अफ्रीका से ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे।
1: In 2008, the Large Hadron Collider at CERN was powered up for the first time. In 2016, Mariappan Thangavelu won a gold medal and Varun Bhati won a bronze medal in Rio Para.
0: और 2020 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और मत्स्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। और अब आज के दिन की विशेषता के बारे में श्रोताओं को बताते हैं। श्रोताओं, कई बार हमारे आसपास कोई ऐसा होता है जो हर रोज मुस्कुराता है, हर किसी का हाल पूछता है, पर खुद अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाता। हम सब भागती दौड़ती जिंदगी में इतने उलझे रहते हैं कि कई बार अपने सबसे करीबी लोगों के भीतर चल रहे तूफान को भी भांप नहीं पाते। शायद इसीलिए साल में एक दिन ठहर कर ये सोचना बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी की जिंदगी बचाने के लिए कभी कभी बस एक सुनने वाला कान और एक साथ खड़े होने वाला हाथ ही काफी होता है। आज का दिन दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 7,20,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति ये कदम उठा लेता है। भारत की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में देश में करीब 1,71,000 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा 18 से 45 साल की उम्र के लोगों का था, यानी वो वर्ग मार्ग जो देश के लिए सबसे ज्यादा उत्पादक और सक्रिय माना जाता है।
1: Yes, Vaishnavi, you rightly said that today we need to listen to each other more than giving advice. So it's important that you listen, you give time and be with that person, because sometimes we don't need the perfect words, we just need to be the person who stays and listens. This World Suicide Prevention Day, with the theme changing the narrative on suicide, start the conversation. Let's remember that a simple conversation can create a safe space for someone who is struggling. If someone says, I'm not doing okay, don't rush to give advice. You don't have to have all the answers or become their therapist. You simply need to be present, because starting the conversation can be the first step towards support and hope. This World Suicide Prevention Day, let's change the narrative from silence to conversation, from judgment to understanding, and from isolation to connection.
0: बिल्कुल सही कहा नीना आपने, क्योंकि कई बार लोगों को बस आखिरी समय में भी कोई चाहिए होता है उनको सुनने के लिए, और कई बार हम उनके पास कोई नहीं होता है सुनने के लिए। तो श्रोताओं, अगर आपके पास भी कोई आसपास है ऐसा जो कि कोई व्यक्ति जो लंबे समय से उदास है या अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे खुलकर बात करें, उसे सुने और जरूरत पड़ने पर उसे किसी काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मिलने के लिए प्रोत्साहित करें। याद करें कि किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ये कोई टैबू नहीं है। लोगों ने इसको बहुत उस तरह से सोच रखा है कि नहीं, हम उनके पास नहीं जाएंगे, और नेचुरल है ये, क्योंकि जैसे हम अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अपने मेंटल हेल्थ भी ध्यान रखें। देश में सरकार की ओर से किरण नाम से एक हेल्पलाइन भी चलाई जा रही है, जिसका नंबर है 1800-599-0019, जहां 2400 घंटे मुफ्त परामर्श लिया जा सकता है। तो आइए इस विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हम सब ये संकल्प लें कि किसी की मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को नजरअंदाज नहीं करेंगे, और बातचीत की शुरुआत करके किसी की जिंदगी बचाने में अपना योगदान जरूर देंगे।
1: And now we come to the section of births and deaths. Dear listeners, today we turn to one of the most inspiring figures in global business, Jack Ma. Born in Guangzhou, China, Jack Ma rose from humble beginnings to become the co-founder and former executive chairman of Alibaba Group, one of the world's largest technology conglomerates. Once an English teacher, he transformed into a visionary entrepreneur, championing the power of an open market-driven economy. Jack Ma has also been recognized internationally, including being named second on Fortune's World's 50 Greatest Leaders list in 2017. And now let's hear a reminder from Jack Ma about time.
2: The question is not how much time do I have? The question is, what are you doing with your 24 hours? I tell you from my heart, most people are not poor because they don't have money. They are poor because they waste their time. They kill their own future every single day, slowly, comfortably, and without even realizing it. They wake up, scroll on their phone for 1 hour, watch useless videos, complain about life, gossip, then say, I don't have time. My friend, stop fooling yourself. Time is the only thing in life you can never get back.
0: जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन अपने निर्णायक दौर में था, तब जतेंद्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें प्यार और सम्मान से बाघा जतिन कहा गया, बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारियों में शामिल थे। वे युगांतर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में रहे और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह की योजना में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बालासोर के चशाखंड में अंग्रेजी पुलिस से उनका भीषण मुकाबला हुआ। गंभीर रूप से घायल बाघा जतिन ने आज ही के दिन 1915 को बालासोर अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। उनके साहस और संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों के क्रांतिकारियों को गहरा प्रभाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं की धरती से निकला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष किया और आजादी के बाद प्रशासन की मजबूत नींव रखने में भी बड़ी भूमिका निभाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। आज ही के दिन 1887 को अल्मोड़ा में जन्मे पंत पेशे से वकील थे और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। वे संयुक्त रूप से प्रांत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में उभरे और स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके सार्वजनिक जीवन और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
1: And now let's dive into the world of cinema with one of Britain's finest, Colin Firth. Born on 10 September 1960, Colin Firth is an actor and producer whose career has spanned decades, genres, and continents. He first

0: बहुत ही
1: नाउ डियर लिसनर्स यस थैंक यू एंड नाउ डियर लिसनर्स लेट्स मीट वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वर्सटाइल एंड थॉटफुल परफॉर्मेंस अतुल कुलकर्णी ही इज एन एक्टर प्रोड्यूसर एंड स्क्रीन राइटर हु हैज लेफ्ट हिज मार्क अक्रॉस हिंदी मराठी कन्नडा मलयालम तमिल तेलुगु एंड इवन इंग्लिश फिल्म्स अ ग्रेजुएट ऑफ द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही फर्स्ट डिस्कवर्ड हिज लव फॉर द स्टेज ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज विनिंग अवार्ड्स फॉर एक्टिंग एंड डायरेक्शन इन द महाराष्ट्र स्टेट ड्रामा कॉम्पिटिशन And there were a lot of national awards and best supporting actor awards that he got in Hey Ram, Chandni Bar. Audiences remember him vividly for Rang De Basanti. And beyond cinema, Atul Kulkarni is deeply committed to education and social change. As president of Quest Education Support Trust, he works to improve learning for children from marginalized communities in Maharashtra. He also contributes to environmental projects, turning barren land into green spaces. An actor, a writer, social thinker, Atul Kulkarni proves that art and responsibility can walk hand in hand, inspiring both on screen and off. Enjoy this Marathi song from his movie.

0: So now, listeners, today is also the birthday of Anurag Kashyap, born on 10 September 1972. He's a director, writer, producer and actor whose work has redefined Hindi cinema. His journey began as a co-writer for Ram Gopal Varma, Satya, Panch and Black Friday.
1: और श्रोताओं, आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
3: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
2: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
3: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है, उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद

0: में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्य जीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पे बड़ी भूमिका निभा सके। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के

0: 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
2: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ चिलिमे और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधे उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर

0: This 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th flight specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख्वातीन और ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर ताउन न करने पर ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और टेनिस में यूएस ओपन में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में दो अमेरिकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्टों में से 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्टों पर 10,783 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि इनसे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 656 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। मगरबी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिले इनके दायरे में आएंगे। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्टों को 2029-30 तक मुकम्मल किए जाने का मंसूबा है।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: जनाब वैष्णव ने बताया कि दीगर 5 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट तकरीबन 10,021 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किए गए हैं। इनसे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर का इजाफा होगा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिले इसके दायरे में आएंगे। इन प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,100 गाँव के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा होगा जहाँ तकरीबन 52 लाख की आबादी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि सरकार ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली से हावड़ा, मुंबई से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से चेन्नई, हावड़ा से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई रूट शामिल हैं।
2: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट

0: पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि जुनूबी भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 रेल प्रोजेक्टों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की राह हमवार होगी और लाखों लोगों को फायदा होगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों से मुतालिक फैसले से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में इजाफी रेलवे नेटवर्क कायम होगा और कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि इससे सियाहत की हौसला अफजाई होगी और लॉजिस्टिक्स लागत भी कम हो जाएगी। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख्वातीन और ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। वजीर मौसूफ ने ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए तरक्की और मौक़ों को बरूएकार लाने के लिए क्रेडिट और मार्केट्स तक रसाई को सहल बनाने और कारोबार के ज़ाब्तों में सहूलत पैदा करने पर भी जोर दिया। जनाब पीयूष गोयल नई दिल्ली में ब्रिक्स की ख्वातीन की ज़ेरे क़यादत तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने ख्वातीन को माली एतबार से, समाजी एतबार से, नीज तालीम, हुनरमंदी और बेहतर मेयारे ज़िंदगी के ज़रिए बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है ताकि ख्वातीन मुल्क की तरक्की में कायदाना रोल अदा कर सकें। जनाब गोयल ने कहा कि भारत में तकरीबन 30 करोड़ बैंक खाते ख्वातीन के हैं और खुद अपना कारोबार शुरू करने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन को आसान शराइत पर कर्जे दस्तियाब होते हैं। वज़ीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया कि देही इलाकों की तकरीबन 10 करोड़ ख्वातीन अब 90 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुपों की मेंबर हैं। जनाब गोयल ने इस बात को दोहराया कि इसका मकसद ख्वातीन को इक्तसादी एतबार से आज़ाद बनाना है। जनाब गोयल ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने 2047 तक $30 ट्रिलियन की मईशत बनने का निशाना तय किया है जबकि आज वो $4 ट्रिलियन की मईशत है। मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज GFF का इफ्तिताह किया था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सेशन का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकॉनमी के उनवान से सेशन से खिताब करेंगे। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा अगली दहाई की फाइनेंस टेक्नोलॉजी एतमाद और इख्तरा की तश्कील के उनवान से एक सेशन से खिताब करेंगे। SEBI के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे, UIDAI के साबिक चेयरमैन नंदन नीलकनी और SBI के चेयरमैन CS Shetty भी दिन के दौरान अहम सेशन से खिताब करने वाले हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने सैलाब से मुतासिर नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ा दी है। 35 टन इमदादी सामान के साथ भारतीय फजाइया का 8वां हवाई जहाज कल काठमांडू में उतरा। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासिर इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रसुआ के मुकाम पर वाक़ टनल भी शामिल है जहाँ भारतीय एहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। नेपाल की कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने वाली अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 13,646 अफराद को बचाया गया है जबकि तकरीबन 5,132 अफराद लापता हैं। लापता लोगों में नेपाल की फौज, पुलिस और मुसल्लह पुलिस फोर्स के अहलकार, सरकारी मुलाजमीन, बैंक और माली इदारों के मुलाजमीन और गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA ने गुज़िश्ता 20 साल में पहली बार ईरान का मामला अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। एजेंसी ने कुछ मुकामात पर यूरेनियम आसार पाए जाने के मामले की तवील अरसे से चली आ रही छानबीन में ताउन करने में ईरान के नाकाम रहने का हवाला दिया है। ईरान ने इन मुकामात के बारे में पहले से कोई इंकशाफ नहीं किया था। IAEA के 35 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड ने 5 के मुकाबले 23 वोटों की हिमायत के साथ मुतालिका करारदाद मंजूर की जबकि 8 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने यह करारदाद तजवीज़ की थी। ईरान का मामला सलामती

0: कौंसिल के सुपुर्द किए जाने से ईरान के खिलाफ पाबंदियां और असासों पर रोक लगाई जा सकती है। अलबत्ता इस तरह के ताज़ीरी इकदामात का इम्कान नहीं है, क्योंकि ईरान के इत्तेहादी मुल्क रूस और चीन सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर हैं और वो किसी भी ताज़ीरी कार्रवाई को वीटो कर सकते हैं। उधर मगरबी मुल्कों के ओहदेदारों ने यह ख्याल जाहिर किया है कि यूरेनियम के आसार एटमी हथियारों के खुफिया प्रोग्राम की जानिब इशारा करते हैं और हो सकता है कि ईरान 2003 तक ये प्रोग्राम चलाता रहा हो। दूसरी तरफ ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की बात से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन है। माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफार्म के बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। FATF ने कहा है कि जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद रकम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए गैम्बलिंग प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने गैर कानूनी और बग़ैर लाइसेंस वाले ऑनलाइन गैम्बलिंग को एक बड़ा ख़तरा करार दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज़ बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में अगले दो दिन के दौरान तेज़ बारिश होने का इम्कान है। इधर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में इस महीने की 15 तारीख तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD ने शहर के सभी 12 जोन्स में खतरे वाली खस्ताहाल इमारतों, गैर कानूनी तामीरात और दिल्ली मास्टर प्लान नीज तामीरात से मुतालिक ज़ैली कवानीन की खिलाफ वर्जियों के ताल्लुक से अपनी मुहिम तेज कर दी है। कल अंजाम दी गई सरगर्म कार्रवाई के तहत MCD के सभी 12 जोन्स में 34 इन्हदामी कार्रवाइयाँ की गईं। इसके अलावा 17 इमलाक को सील कर दिया गया, 22 को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया और इन्हदाम से मुतालिक 4 अहकाम मंजूर किए गए। मंगल के रोज भी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की थी, जिसके दौरान दिल्ली मास्टर प्लान और तामीरात से मुतालिक ज़ैली कवानीन की खिलाफ वर्जियों की पादाश में 17 इमलाक मुनहदिम की गई, जबकि 5 इमलाक को सील किया गया। कौमी राजधानी में पेइंग गेस्ट PG इमारतों के बड़े पैमाने पर सर्वे के तहत ऐसी तकरीबन 1,243 इमारतों की निशानदेही की गई जो PG सहूलियात के तौर पर काम कर रही हैं। इनमें तकरीबन 24,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। पूरी दिल्ली में सर्वे का अमल जारी है और ये सर्वे आज मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। US ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में दो अमेरिकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्स माइकलसन को शिकस्त दी। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला 3रे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला से होगा, जबकि 4थे नंबर की खिलाड़ी कोकोगाफ कजाखिस्तान की एलिना रिबाकीना का सामना करेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप ने हुकूमत के जरिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में रेल लाइनों की सलाहियत बढ़ाने के लिए 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखता है, इन प्रोजेक्टों से रेल नेटवर्क में 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका से समुद्री ताउन बढ़ाने पर दिया जोर, कहा महफूज समुद्री रास्ता और बिला तातुल तजारत जरूरी। नेपाल में 26 अगस्त को आए तबाहकुन सैलाब के बाद भारत की जानिब से इमदाद और बचाव का ऑपरेशन बदस्तूर जारी। इस खबर को इनकलाब ने सफे अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन के इस बयान को भी नुमाया किया है कि कबायली बिरादरियां भारत का मुस्तकबिल संवारने में शराकत दार हैं।
0: खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैन अल-अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख्वातीन और ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर ताउन न करने पर ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए ना तो झुककर उठा लेना चाहिए। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। वक्त हो गया है आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का जिसका नाम है म्यूजिकल दिल लगी, और आज म्यूजिकल दिल लगी में आपके साथ हूं मैं सुरति। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अचानक से किसी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं तो वो सामने प्रकट हो जाता है, या किसी के बारे में सोच रहे होते हैं तो उसका फोन आ जाता है, और ऐसा होता है तो दिमाग में क्या थॉट्स आते हैं। इस गाने को सुनिए, वो थॉट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HRD से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
0: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
7: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है, ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप सुरति के साथ। ब्रिक्स समिट 2026 की वजह से 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में कई सड़कें बंद रहेंगी। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस ने 22 डायवर्जन पॉइंट्स और 35 से ज्यादा सड़कों को नियंत्रित करने की एडवाइजरी जारी की है और ऐसे में सबसे बेहतरीन जो विकल्प बताया जाता है वो है मेट्रो का। अब सवाल ये उठता है कि हमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें उस टाइम पर ट्रैवल करना होगा, फ्लाइट्स पकड़नी होगी, एयरपोर्ट जाना होगा, तो एयरपोर्ट जाने वालों के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अलग अलग दिशाओं से वैकल्पिक मार्ग बताए हैं। गुरुग्राम से आने वाले लोग NH 48, द्वारका एक्सप्रेसवे या मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। नई दिल्ली और साउथ दिल्ली से आने वाले रिंग रोड, ITO

या मेट्रो का विकल्प अपना सकते हैं। द्वारका से जाने वाले द्वारका रोड या मेट्रो ले सकते हैं। वेस्ट दिल्ली से जाने के लिए पंजाबी बाग चौक, रिंग रोड या फिर मेट्रो यूज करें। वैसे कुल मिलाकर देखा जाए तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जब जाम की स्थिति हो तो मेट्रो ही कहलाती है ना।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया इजाजत लेने का, इसलिए मुझे यानी सुरती को दीजिए इजाजत, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना है। म्यूजिकल दिल लगी का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। 9:10 पर नीतू के साथ वक्त हो गया है समाचारों का। सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। दीजिए इजाजत, खुश रहिए, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेल नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूर्या से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब एजेंसी बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है।

101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू आ गई है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। अब सुबह सुबह होता क्या है ना कि हम घर से निकलते हैं और अचानक जिस चीज में आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, जिस भी ट्रांसपोर्ट का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो व्हीकल हो जाए खराब, तो कैसा लगता है आपको? बहुत खराब ना। लेकिन कभी कभी हम उसी परिस्थिति में ना बड़ा मुस्कुरा के उस चीज से डील करते हैं और तब ना ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं और सब आगे अच्छा ही होता चला जाता है। लेकिन जब हम उस परिस्थिति में और बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हर चीज उसके बाद वाली ना बिगड़ती चली जाती है। कैसा अजीब सा दिमाग है ना हम लोगों का। हम इंसान किसी भी परिस्थिति में एक जैसा रिएक्ट कर ही नहीं पाते हैं। पर ठीक है, गानों के साथ हम हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं, उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अच्छे गाने हमेशा अच्छे लगते हैं, जैसे कि ये।

आप भी पहचानते हैं, जानते तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम आपको बार बार याद दिलाते रहते हैं कि कल है 11 सितंबर और कल दिल्ली में सरकारी दफ्तर और PSU बंद रहेंगे, बैंक भी बंद रहेंगे। तो आपको कोई भी काम हो बैंक का या किसी सरकारी दफ्तर में तो आज ही निपटा लीजिए, कल आप ये काम नहीं कर पाएंगे। और हाँ, कल वैसे भी बाहर आप निकलेंगे तो बहुत सारा ट्रैफिक डाइवर्जन है, तो निकलने से पहले ज़रूर एडवाइजरी चेक कर लीजिएगा। और एक अच्छी बात यह है कि मेट्रो पूरी तरह से ऑपरेशनल है, तो आपको कहीं भी जाना हो ना तो मेट्रो का इस्तेमाल कीजिए ना, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास।

0: आज हम याद कर रहे हैं पंडित गोविंद वल्लभ पंत को, उनकी जयंती पर। उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ था अल्मोड़ा जिले के खूंट गांव में। वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, बाद में देश के गृह मंत्री भी बने। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने और देश के प्रशासनिक एकीकरण में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है ये, और अब वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
3: देश के हर गरीब, हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
2: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
0: इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है ना जो मुश्किल वक्त से ना गुजरता हो। कभी कभी लोग इतने हताश निराश हो जाते हैं कि जिंदगी में छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, जिंदगी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। और इसी कदम को रोकने के लिए हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ताकि आत्महत्या की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़े, लोग समझें कि किन हालात में कोई व्यक्ति ऐसा कठोर कदम उठाने पर मजबूर हो जाता है। आप देखिए ना, जो इस हद तक परेशान है कि वो एक कदम उठा रहा है, वो तो कुछ सोचने समझने की स्थिति में ही नहीं होता, लेकिन उसके आसपास के लोग तो हो सकते हैं ना, वो तो समझ सकते हैं। जरूरतमंद लोगों तक सहायता और समर्थन कैसे पहुंचे। कई बार हमें इंसान को ना ऐसा होता है कि कई बार उसे कोई ऐसा मिल नहीं पाता जिससे वो अपने दिल की बात कह पाए, अपनी मुश्किलें बयां कर पाए। कई बार लोग कह नहीं पाते, कई बार उन्हें ऐसा माहौल नहीं मिलता, वो इतनी मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं कि किसी से मदद मांग नहीं पाते। लेकिन अगर आप किसी ऐसी मुश्किल से गुजर रहे हैं तो प्लीज़ किसी से मदद लें, चाहे वो कोई मेडिकल हेल्प हो, चाहे किसी से बात करना हो या दोस्तों की मदद हो, बस ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि हालात जैसे भी हो ना हमेशा नहीं रहने वाले। अच्छा हो बुरा हो सब बदल ही जाता है एक ना एक दिन, तो बस तब तक का इंतजार करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते रहें, यही है इस दिन का मकसद। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, ये है नीतू के साथ म्यूजिकल दिल लगी।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये box देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
3: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
4: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
5: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

एफएम गोल्ड, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे, सदाबहार नगमे और पुराने नगमे, जिन्हें पुराना कहा जाता है। हालांकि वो इतने फ्रेश होते हैं कि आप कभी भी सुने, आपको उन्हें सुनकर ना मजा ही आता है, एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होती है उन्हें सुनकर। तो ऐसे ही नगमे हम आपको सुनाते हैं। ये है म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूं नीतू आपके साथ। और नगमों के साथ साथ ना कुछ बातें भी हम आपसे करते रहते हैं जो कि काम की होती हैं। जैसे कि हम सब, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा होगा जो पतला होता है ना, वो भी अपने आप को मोटा समझता है और मोटापे से हम सब परे

परेशान रहते हैं। तो डॉक्टर्स का मानना यह है कि आजकल मोटापा कम करने की दवाइयों का सेवन ना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी कोई भी दवा डॉक्टर के परामर्श के बिना नहीं लेनी चाहिए। और मोटापे को सिर्फ BMI से तो बिल्कुल ही नहीं आंकना चाहिए, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये जानना है कि शरीर के किस हिस्से में कितना फैट है। मोटापा बढ़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ जंक फूड और नॉन एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं है, कभी कभी किसी बीमारी या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी मोटापा बढ़ सकता है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि भरपूर नींद ना लेने से भी मोटापा बढ़ सकता है। तो पहले कारण का पता लगाइए, तभी ठीक इलाज मिल सकेगा। यूं ही कोई भी दवा खा लेना खतरनाक हो सकता है। तो जो ये सारे वजह बताई गई है ना, पहले इन पर नजर रखिए। आपको नींद पूरी आ रही है, नहीं आ रही है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आपका खान पान कैसा है, उस हिसाब से डॉक्टर से परामर्श करें और फिर दवाई खाएं।

हम हमेशा ऐसे अच्छे मौसम की कल्पना करते हैं और लेकिन जैसे ही गर्मियां आती है ना, हमारी सबकी हालत खराब हो जाती है और फिर एसी चलता है, फ्रिज भी

लगातार चलते ही रहते हैं, लेकिन आपको पता है कि दुनिया भर में जो एसी, फ्रिज और डेटा सेंटर्स हैं, इनको ठंडा रखने के लिए कितनी भारी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल होता है और उससे पर्यावरण पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसी से निपटने के लिए एक ऐसी तकनीक विकसित की गई है जो बिजली की बजाय धूप या वेस्ट हीट का इस्तेमाल करके ठंडक पैदा करती है। वैसे ऐसी तकनीक भी विकसित हो जानी चाहिए जो गर्मी के मौसम की धूप और उमस को ना ठंडक में बदल दे, ताकि आम लोगों को भयानक गर्मी से राहत मिल सके। चलिए, अभी तो राहत पाने का तरीका सिर्फ गाने हैं, तो गाने सुनिए और एंजॉय कीजिए।

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: म्यूजिकल दिल लगी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, जो कि देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लक्ष्य है मछुआरों की आय बढ़ाना, आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना, रोजगार के नए अवसर पैदा करना और मछली उत्पादन और निर्यात को मजबूत करना।

दुनिया में कितना विरोधाभास है ना, कि कहीं लोगों के पास तन ढकने को कपड़े नहीं हैं, तो कहीं पर लोग डिस्पोजेबल फैशन को अपना रहे हैं। जी हाँ, ये एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है चीन में, जहाँ युवा सफर में भारी बैग उठाने के झंझट से बचने के लिए सफर के दौरान बेहद सस्ते कपड़े खरीदते हैं और एक बार फोटो खिंचवाने के बाद उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एक फैशन की का तलब होना या लालच होना।

0: FM Gold, Khara Sona. Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की, आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 20

0: गोल्ड, खरा सोना।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026. A moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: FM Gold, Khara Sona.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिन नोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
2: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को

0: का उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 19 सितंबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। कच्चे तेल की कीमत कल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक में आज दोपहर मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 105 अंक बढ़कर 74,869, जबकि निफ्टी 27 अंक बढ़कर 23,459 पर रहा। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has held high-level bilateral meetings with his counterparts from Malaysia, Timor-Leste and Myanmar. The meeting was held on the sidelines of the 9th ASEAN-India Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry in New Delhi. During his meeting with Malaysia's Agriculture and Food Security Minister, Malaysia Mohammed bin Sabu, Mr. Chauhan noted the importance of sharing knowledge, expertise and best practices. Timor-Leste's Agriculture Minister, Mr. Marcos da Cruz, expressed interest in building strong institutional mechanisms between both sides to address various challenges in agriculture and ensuring food security for the nation. Meanwhile, Mr. Chauhan held a meeting with the Agriculture Minister of Myanmar, May Now. During the meeting, the minister noted that the Memorandum of Understanding between the two countries is at an advanced stage of finalization for strengthening the cooperation in agriculture and allied sectors. Defence Minister Rajnath Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defence Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defence partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations' growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific. Mr. Singh noted that the development follows highly productive discussions held with his Japanese counterpart, Shinjiro Koizumi, in New Delhi last month. The defence minister said mutual exchange of visits such as Exercise Veer Guardian further strengthens this synergy.

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है।

जब कोई इतनी मोहब्बत दिखाता है, इतने भरोसे के साथ कहता है कि तुझे हमेशा दिल के पास रखूंगा, तो फिर उदास होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। ब्रह्मचारी है फिल्म का नाम जिसका ये गाना था, और संगीत है शंकर जयकिशन का। दोस्तों, ब्रह्मचारी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि इमोशन था जो उस वक्त जुड़ गया था हिंदी फिल्मों के चाहने वालों के साथ। एक कंप्लीट मूवी जिसमें एक्शन, ड्रामा, म्यूजिक, एक्टिंग सब कुछ बेमिसाल था। शम्मी कपूर को तो इस

0: 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: सौ दशमलव एक मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप कलाकार बेमिसाल में। आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार भप्पी सोनी को। दोस्तों, नए कलाकारों को काम देने और नई नई जोड़ियां बनाने में भप्पी सोनी को महारत हासिल थी। ऐसी कई ऑन स्क्रीन जोड़ियां रही जिन्हें भप्पी सोनी ने बनाया, जैसे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी। दोस्तों, वैसे तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो पहली मुलाकात थी वो फिल्म आसमान महल के प्रीमियर पर हुई थी साल 1965 में, लेकिन दोनों ने साथ में काम किया 1970 में भप्पी सोनी की फिल्म तुम हसीन मैं जवान में। इसके बाद तो आगे की कहानी आप जानते ही हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हिंदी सिनेमा की सबसे पसंदीदा और हिट जोड़ियों में से एक माने जाते हैं, जो रील और रियल लाइफ दोनों में साथ रहे। इसके अलावा सुनील दत्त और वहीदा रहमान को भी पहली बार भप्पी साथ लेकर आए 1960 में अपनी फिल्म एक फूल चार कांटे के लिए।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना ये गाना एक फूल चार कांटे फिल्म से। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम बप्पी को, आज हमने याद किया बप्पी सोनी को। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। 2:30 पर आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप बने रहें आकाशवाणी एफएम गोल्ड के साथ। अब से कुछ ही देर में उर्दू में खबरें, उसके बाद समाचार का पूरा प्रोग्राम होगा, अच्छे से सुनिएगा।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हमनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हुसूलियाबियों की सताइश की है। उन्होंने तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और यूएस ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स का सेमीफाइनल खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ आला सतही दोतरफा मीटिंगें की। नई दिल्ली में ज़राअत और जंगलात से मुतालिक नवें आसियान भारत वजारती मीटिंग के मौके पर कल ये मीटिंगें हुई। मलेशिया के ज़राअत और खुराक की यकीनी फराहमी के वजीर मोहम्मद बिन साबू के साथ मुलाकात के दौरान जनाब चौहान ने मालूमात, महारत और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर भी दिलचस्पी का इजहार किया। इस दौरान जनाब चौहान ने म्यांमा के ज़राअत के वजीर मिन नाउंग के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़राअत और उससे वाबस्ता शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमतनामे आखिरी मरहले में हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में जुनूब मशरकी एशिया के लिए WHO की इलाकाई कमेटी के 79वें इजलास के मौके पर सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। डॉक्टर टेड्रोस ने खासतौर से जच्चा बच्चा की सेहत और गैर मुतअद्दी बीमारियों से निमटने के सिलसिले में सेहत के मामले में भारत की नुमाया हुसूलियाबियों की सताइश की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि

0: 160,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए भारत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आम कैंसर के सिलसिले में स्क्रीनिंग को मुस्तहकम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की आशा वर्कर सेहत की देखभाल की एक और ताकतवर मिसाल हैं, जो जहां लोग हैं वहां पहुंचती हैं और माओं और बच्चों को हमल से लेकर बाद तक मदद फराहम करती हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि टीकाकारी में तौसी और इदाराजाती जच्चगी में इजाफे से जच्चा बच्चा अमवात में खातिरखा कमी आई है। ब्रिक्स समिट 2026 से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ती हुई सिक्योरिटी तशवीश के मद्देनज़र इस माह की 14 तारीख तक आज से कौमी राजधानी में ड्रोन उड़ाने और मुख्तलिफ दीगर छोटे फजाई प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने समिट के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त के एक हिस्से के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए हैं। ये पाबंदी पीर के रोज तक जारी रहेगी। तमिलनाडु में मदुरानताकम और धारापुरम रिजर्व असेंबली हलकों का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जा रहा है। कागजात नामजदगी इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। इधर डीएमके पार्टी ने दोनों हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव अहमियत का हामिल है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के बाद इत्तेहाद बदल गया है। टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कड़गम की जेरे क्यादत इत्तेहाद को सेक्युलर सोशल जस्टिस विक्ट्री अलायंस का नाम दिया गया है, और कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और एमडीएमके जैसी पार्टियां उसकी नई इत्तेहादी पार्टियां हैं, जो पहले डीएमके इत्तेहाद में शामिल थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके मुताबिक ईरान जंग नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद तक जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि खाम तेल की कीमतें इससे कबल नीचे नहीं आएंगी। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो समझते हैं कि इन इंतखाबात के बाद जंग फौरी तौर पर रुक जाएगी। उन्होंने अपने इस दावे के बारे में शवाहिद पेश नहीं किए कि ईरान इन इंतखाबात को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है। 7 महीने से जारी इस जंग ने खाम तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है और ट्रंप की मंजूरी की दर्जाबंदी को मुतासर किया है, जिसके सबब रिपब्लिकन इस जंग को खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। जुलाई के बाद से कल पहली मर्तबा खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल पर थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज के लिए ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अगले 3 से 4 रोज के दौरान आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इस माह की 15 तारीख तक गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। बिहार में कई नदियों की आबी सतह नीचे आने की वजह से सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बचाव और राहतकारी की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक और बागमती नदियों की पानी की सतह नीचे आ गई है, जिसके सबब सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है। बचाव और राहत कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर और अरवल समेत 14 अजला में 40 लाख से ज्यादा अफराद इस सैलाब से मुतासिर हुए हैं। राहती कैंप खाने का सामान, तिब्बी सामान और मदद और दीगर अशिया फराहम कर रहे हैं। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि तकरीबन 700 देही सड़कें पानी में डूबी हुई हैं, जिससे सड़क कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। सड़कों की तामीर के वजीर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने अफसरान से सड़कों पर करीबी नजर रखने को कहा है और जैसे ही पानी की सतह नीचे होती है इन सड़कों की मरम्मत करने के अहकाम दिए हैं। निधि श्री की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एक मुकम्मल 270 रुकनी रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान किया है। रियासती सदर सामिक भट्टाचार्य की हिदायत के तहत वजीर आला शुभेंदु अधिकारी लिस्ट में सरी फहरिस्त हैं और उन्हें तमलुक तंजीमी जिले के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा तालीम के मरकजी वजीर ममलिकत सुकांता मजुमदार को साउथ दिनाजपुर की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर ममलिकत को बोनगांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत ने सैलाब से मुतासरा नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ा दी है। 35 टन इमदादी सामान के साथ भारतीय फजाइया का 8वां हवाई जहाज

काठमांडू में उतरा। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासरा इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रासोवा के मकाम पर वाकई टनल भी शामिल है, जहां भारतीय एहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। क्रिकेट में दुबई में खवातीन एशिया कप के सेमीफाइनल मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारत टूर्नामेंट में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा। हरमनप्रीत कौर की टीम ने थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान को आसानी के साथ हराकर सभी 3 ग्रुप मैच जीते हैं। ग्रुप बी में बांग्लादेश श्रीलंका के बाद दूसरे मकाम पर है। भारत ने बांग्लादेश के साथ 24 T20 मैचों में से 21 मैच जीते हैं और भारत की टीम पिछले 8 मैचों में बांग्लादेश के खिलाफ कोई मैच नहीं हारी है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एशिया कप में 2018 में जीत हासिल की थी, जब उसने भारत को हराकर खिताब अपने नाम किया था। यूएस ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल सेमीफाइनल में 2 अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्सिस माइकलसन को शिकस्त दी। शेल्टन और टियाफो दोनों ही अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीतने की कोशिश कर रहे हैं। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन आरियाना सबालिंका का मुकाबला 3रे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगोला से होगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गैब्रेसिस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हसूलियाबियों की सताइश की है और उन्हें तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड स्लाइटली इन द स्टेट एज वाटर लेवल्स इन द गंगा सोन पुनपुन गंडक एंड बागमती रिवर्स हैव रिसीडेड रिलीफ एंड रेस्क्यू वर्क हैज बीन स्टेप अप मोर देन 4 मिलियन पीपल इन 14 डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग पटना वैशाली सारण मुंगेर भागलपुर एंड अरवल आर अफेक्टेड बाई फ्लड्स रिलीफ कैंप्स आर प्रोवाइडिंग फूड मेडिकल कैंप एंड एसेंशियल सप्लाईज हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज हैव बीन डैमेज्ड व्हाइल नियरली 700 रूरल रोड्स रिमेन अंडर वाटर अफेक्टिंग रोड कनेक्टिविटी रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर इंजीनियर कुमार शैलेंद्र हैज आस्क्ड ऑफिशियल्स टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन द रोड्स एंड रिपेयर देम एज सून एज द वॉटर रिसीड्स द एजुकेशन डिपार्टमेंट इज ऑल्सो मेकिंग अरेंजमेंट्स टू कंटिन्यू द स्टडीज ऑफ चिल्ड्रेन इन फ्लड अफेक्टेड एरियाज मीनवाइल द सिचुएशन रिमेन्स कंसर्न इन बलतारा इन खगड़िया एंड कुर्सेला इन कटिहार वेयर द कोसी इज फ्लोइंग अबाउट 1.5 मीटर्स अबव द डेंजर मार्क टीम्स ऑफ द वॉटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन द सिचुएशन निधिश्री फॉर आकाशवाणी न्यूज पटना
1: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण विकास युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा कृषि ग्रामीण विकास युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की

0: राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सी एस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन नीलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनॉम घेब्रेयेसस ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
4: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
5: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलू संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वेत्री खशगम

0: टीवीके के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी डीएमके ने मधुरंतकम से पारंथमन और धरपुरम से एस सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
0: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा।

0: भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मौके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधुसिदा सुप्रिया और रोशनी एंद ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोते हो, प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलो हर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 होत आहेत। सादर करीत आहोत नादब्रह्म हा शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम। नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आता आपण ऐकणार आहात वीणा शुक्ल यांनी गायलेला राग मुलतानी। यांना तबला साथ दिली आहे प्रसून चॅटर्जी यांनी आणि हार्मोनियमची साथ आहे सुप्रिया जोशी यांची। विलंबित आणि द्रुतबंदिश आहे एक तालात। तर ऐकूया वीणा शुक्ल यांनी गायलेला राग मुलतानी।

0: તમારા પર જીવનમાં પહેલી જ વાર આ પ્રસંગ આવી રહ્યો છે એવું નથી, દુનિયામાં કોઈક એવી વ્યક્તિ હશે જેના જીવનમાં આ પ્રસંગ નક્કી આવ્યો હશે. એટલે કોઈની સાથે વાત કરો, સંવાદ કરો, તમારા શોખના વિષયો કેળવો, ગીતો સાંભળો, ફિલ્મો જુઓ, અને કંઈ નહીં થાય તો લાફ્ટર ક્લબમાં જઈને જોર જોરથી હસો, અને રડવું આવે ને તો જોર જોરથી રડો, પણ તમારા મનનું દુઃખ જે છે, અંદર જે દુઃખનો ડુંગર ભરી ગયો છે ને, એને બહાર ઠાલવો.
1: એકદમ સાચી વાત કરી તરુબેન. પણ ક્યારેક આપણે એમ વિચારીએ ને કે હું આને આ વાત કરીશ કે મારી ડાયરી કોઈ વાંચી તો નહીં લે.
0: ના ના, એવું કાંઈ નથી હોતું. કોઈને તમારા જીવનમાં આટલું બધો કોઈની પાસે સમય જ નથી
1: કે આપણા જીવન,
0: કારણ કે મારી પાસે મોબાઈલ જોવા માટે સમય છે ને, તો હું મારો મોબાઈલ જોઈશ ને તમારી ડાયરી વાંચવા કરતા, એકાદ બે રીલ જોઈ લઈશ. એટલે કોઈ તમને તમારા જીવનમાં કોઈને રસ નથી એવી બધી વસ્તુઓ કરવા માટે. એટલે આવું કાંઈ આત્મહત્યાનું પગલું ભરવાની જરૂર નથી. જીવન ખૂબ સુંદર છે, જીવન ઈશ્વરે આપ્યું છે, ઈશ્વર જેટલો સુંદર છે ને એટલું જ જીવન સુંદર છે, એને ખૂબ માણો. અને અત્યારે મને તરુલતા કરોડિયા
1: અને મને શ્વેતાને રજા આપો, ફરી મળીશું એ વચન સાથે. બરાબર 4 વાગે આપ સાંભળશો સમાચાર.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है. श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत पर आधारित है. श्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए आज ये बात कही.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसरो ने हर मिशन और हर सफलता के साथ अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है. भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बनाया और आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को उजागर कर रहा है. उन्होंने वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और वर्ष 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने के भारत के लक्ष्य पर भी बल दिया. श्री मोदी ने फ्रांस और दुनिया को भारत की अगली अंतरिक्ष यात्रा में सहयात्री बनने के लिए भी आमंत्रित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया. प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की. सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों और भारत तथा विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में जारी है. ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक है. सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इंपैक्ट एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम. दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से आगामी सोमवार तक दिल्ली में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत इससे संबंधित आदेश जारी किया. सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के

बार फिर से हाजिर हूँ मैं नई मख्तर आपके साथ लेकर कुछ फिल्म संगीत। आप सुन रहे हैं 100.1 MHz पर आकाशवाणी FM गोल्ड। वक्त हुआ है 4:11:10 और इससे पहले के कार्यक्रम के अंदर हम गीतों की शुरुआत करें, पहले एक संदेश सुनते हैं फिर उसके बाद गीतों का आगाज करते हैं।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

0: prescribed selection criteria. For details, do refer to the website at www.paradeepport.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सैनिक स्कूल नगरोटा जम्मू आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान, वार्ड बॉय, बैंड मास्टर, PEM, PTI सह मैट्रन महिला और काउंसलर, ये सभी पद अनुबंध के आधार पर भरे जाने हैं। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.sainikschoolnagrota.com। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति आमंत्रित कर रही है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता 4 पद, पर्यावरण अभियंता 2 पद, सहायक पर्यावरण अभियंता 11 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र की 5 सितंबर 2026 से 11 सितंबर 2026 की प्रति। HIL इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। अतिरिक्त महाप्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक विपणन 5 रिक्तियां, प्रबंधक वित्त 1 रिक्ति, प्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन 2 रिक्तियां तथा प्रबंधक विद्युत अभियांत्रिकी 1 रिक्ति। विस्तार निदेशालय आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। फोटोग्राफिक अधिकारी 1 रिक्ति, ज्येष्ठ अनुवादक 1 रिक्ति, सहायक विस्तार अधिकारी 1 रिक्ति, आशुलिपिक ग्रेड 1 3 रिक्तियां, फोटोग्राफर 2 रिक्तियां, उच्च श्रेणी लिपिक 9 रिक्तियां तथा स्टाफ कार ड्राइवर 1 रिक्ति। इन पदों से संबंधित विस्तृत जानकारियों के लिए देखिए विस्तार निदेशालय की वेबसाइट www.agriwelfare.nic.in तथा www.krishivistar.gov.in। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC को आवश्यकता है वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता तथा सहायक पर्यावरण अभियंता की। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए 5 सितंबर से 11 सितंबर 2026 का रोजगार समाचार पत्र। पत्तन प्रबंधन बोर्ड अंडमान एवं निकोबार प्रशासन श्री विजयपुरम में अनुबंध के आधार पर एक पायलट अधिकारी की नियुक्ति के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्र एवं इच्छुक उम्मीदवार देख सकते हैं वेबसाइट www.andamannicobar.gov.in। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर के 9 पदों, एसोसिएट प्रोफेसर के 7 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर के 43 पदों के लिए आवेदन। निर्धारित शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव, आवेदन शुल्क, अन्य विवरण एवं अद्यतन जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट cihts.ac.in/recruitment। प्रशिक्षण महानिदेशालय को आवश्यकता है एक अपर डिवीजन क्लर्क UDC की तथा एक लेखाकार खरीद सहायक की। इन पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव आदि की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इस वेबसाइट पर, जिसका पता है www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। वेबसाइट का पता एक बार फिर से सुन लीजिए www.rdsdegujarat.dgt.gov.in। महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस आमंत्रित कर रहा है भारतीय नागरिकों से डिप्टी कमांडेंट ट्रांसपोर्ट के 3 पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए आवेदन। इन पदों से संबंधित नियम, शर्तों, अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, पात्रता मानदंड आदि की जानकारी के लिए देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की वेबसाइट www.i

0: atbpolice.nic.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बज चुके हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे। चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शगुन चोपड़ा। हेलो शगुन।
3: हेलो जया एंड टू आवर लिसनर्स, हेलो, गुड डे एवरीबॉडी। दिस इज परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम टुडे विद मी शगुन चोपड़ा एंड जया, एंड वी आर वेरी थ्रिल्ड, वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द प्रोग्राम। दिस इज अ हाफ एन आवर प्रोग्राम व्हिच विल इन्वॉल्व अस बिगिनिंग विद द हेडलाइंस एंड देन अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया। इट्स डेडिकेटेड टू, एंड एक्चुअली वी विल टॉक अबाउट, वी विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। यू हैव टू लिसन इन टू दैट लिसनर्स, एंड देयर विल बी आवर ट्रिब्यूट्स ऑल्सो एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम व्हिच वी ऑल वेट फॉर द personalities that made a difference, a huge difference. All of this over the next 30 minutes. We are beginning with the headlines. Shall we start?
2: Jee.
3: Prime Minister Narendra Modi says India supports safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा।
3: WHO chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal, child care and non-communicable diseases.
2: दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की।
3: Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies.
2: Odisha mein aaj moosladhar varsha ka red alert.
3: And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. This is our discussion segment, Dateline India. Well, sometimes one simple question can make a big difference, a huge difference. And you know what that question is? Well, it is as simple as how are you really feeling? Today, it's World Suicide Prevention Day. Jaya.
2: बिल्कुल। और कभी कभी ये जो सवाल आपने कहा, बस सुनने के लिए तैयार रहने से ही किसी को यह याद दिलाया जा सकता है कि वह अकेले नहीं है।
3: That is true. This is a global day which is dedicated to raising awareness, reducing stigma actually, and reminding us that suicide is preventable.

0: बिल्कुल लव यू जिंदगी, तो कुछ गाने हैं जो हमें अपने आप से प्यार करना भी सिखाते हैं शगुन. और अगर कहें तो सबसे जो अच्छा पल होता है, जो सबसे अच्छा सुकून देने वाला होता है, वो खुद से प्यार करना ही होता है. सो लव यू जिंदगी. और इस खास दिवस पर इस साल का संदेश भी खास है कि आत्महत्या के बारे में सोच और बातचीत का तरीका बदलना. और इसके साथ ही यह अपील भी है कि बातचीत शुरू करें.
1: Well, yes, we should love our life, love ourselves first. And World Suicide Prevention Day has been observed since 2003. We're delving into the history a bit. This was actually developed by the International Association for Suicide Prevention in partnership with the World Health Organization, WHO.
0: ₹3,000. और हर साल 10 सितंबर समुदायों, संगठनों और सरकारों को एक साझा सोच के साथ एक साथ लाता है कि आत्महत्या को रोका जा सकता है.
1: That is true. Well, more than 7,20,000 people die by suicide every year worldwide. And a tragic number. Behind every number is a person, a family, a friendship, a workplace and a community affected by that loss. How disheartening.
0: और इसलिए बचाव का मतलब सिर्फ संकट के समय स्थिति से निपटना नहीं है. इसका मतलब एक ऐसा समाज बनाना है जहां लोग बिना किसी डर, शर्म या लोगों की राय की परवाह किए बिना अपनी भावनात्मक तकलीफ के बारे में बात कर सके. और इस साल का संदेश भी हमसे यही करने को कहता है कि आत्महत्या के बारे में हमारी बातचीत का तरीका बदलना. तो बातचीत शुरू करें, यानी कि स्टार्ट द कन्वर्सेशन का असल में क्या मतलब है?
1: स्टार्ट द कन्वर्सेशन, वेल इट मींस Noticing when someone may be struggling, you have to be empathetic to actually notice people who are hiding their pain and having the courage actually to check in. You don't need to be a psychologist for that, है ना? That's for sure. And you don't need to have all the answers. You just simply have to say, I've noticed you've been having a difficult time, or do you want to talk?
0: या फिर आप पूछ सकते हैं कि आप असल में कैसा महसूस कर रहे हैं?
1: And actually, most of the times, the most important thing that you can do is to listen. Listen without judging. Let the person speak. Let the person finish. And don't tell someone to simply be strong or forget about it. It's not that easy sometimes.
0: बिल्कुल. इसके बजाय उन्हें हमें यह बताना है कि उनकी भावनाएं भी मायने रखती हैं. उन्हें अकेले इसका सामना नहीं करना है और मदद भी हमारी तरफ से हमेशा उपलब्ध है.
1: Well, as you are saying it, it is reminding me as well. Right, and our listeners should also take a note of it that there may not always be an obvious sign that someone is struggling, right? But changes in behavior, mood or communication, the way they communicate can sometimes indicate that a person needs support. Well, now, let's listen in to a dialogue from the movie Dear Zindagi in voice of Shah Rukh Khan. Listen in.
2: Jab hum apne aap ko achhi tarah samajh lete hain, dusre kya sochte hain, it doesn't matter. Not at all. हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा.
1: ट्रू, दैट इज ट्रू.
0: बिल्कुल. और जैसे हमने भी कहा कि खुद से प्यार करना चाहिए, तो हमें ये परवाह करना ही छोड़ देना चाहिए कि गैर या दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं. कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे कि निराशा या फिर फंसा हुआ, या फिर जब भी आप बेबस महसूस करें तो खुद को बोझ नहीं समझना है.
1: Also, you can actually notice the changes that we have been talking about in a person's behavior. It can be talking about death or suicide, or even they can say that they don't want to be alive. Such serious matters and serious conversations, they can help the person to cope up, and they even start withdrawing from friends or families or activities that they once enjoyed. It is a very, very clear sign. The activities, they completely stop doing those, and major changes in their mood, sleep, behavior, or even everyday functioning. That's what you can look for.
0: बिल्कुल. और इसी तरह से अगर कोई अपनी चीजें दूसरों को देता है, अजीब तरह से अलविदा कहता है, भावनात्मक परेशानी के साथ साथ शराब या ड्रग्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, या बहुत ज्यादा भावनात्मक दर्द जाहिर करना, और यह कहना कि वे अब दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते.
1: एंड यू हैव टू बी एम्पैथेटिक एट ऑल टाइम्स, वेरी पोलाइट. एंड हियर समथिंग इंपॉर्टेंट, वन वार्निंग साइन डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट समवन विल अटेम्प्ट सुसाइड, इवेंचुअली अटेम्प्ट सुसाइड. बट व्हेन सिग्निफिकेंट चेंजेस दे आर कंबाइंड विद एक्सप्रेशंस ऑफ होपलेसनेस और सुसाइडल थॉट्स, रेगुलरली अकरिंग सुसाइडल थॉट्स, दे शुड बी टेकन वेरी सीरियसली.

0: seriously. And if you are worried about someone, something, just start with care.
1: बिल्कुल. और अगर आप किसी के बारे में केयर कर रहे हैं, किसी को लेके परेशान हैं कि वो कुछ अलग कर रहा है, तो उससे पूछें, उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को गंभीरता से लें, उनसे जुड़े रहें. और कभी कभी एक मैसेज, फ़ोन कॉल या बस किसी के साथ बैठना भी हमारी सोच से कहीं ज़्यादा मायने रखती है.
0: And you can encourage them to speak with a mental health professional, counselor, doctor or helpline. And if someone is in immediate danger, do not, at all times, do not leave them alone. You can seek emergency assistance or take them to the nearest emergency medical facility. They will be given the necessary help. And if someone tells you they are thinking about suicide, don't promise to keep it a secret. Their safety comes first. Yeah.
1: बिल्कुल. तो आइए यह भी देखें कि भारत में क्या हो रहा है, यानी कि हमारे देश में क्या हो रहा है. और सरकार ने 2022 में देश की पहली नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी, यानी कि आत्महत्या रोकथाम रणनीति शुरू की थी. इसका मकसद कई क्षेत्रों को शामिल करने वाले तरीके से 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मौतों को 10% तक कम करना है. इस रणनीति में कई उपाय शामिल हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य की जांच, संकट के समय मदद के लिए हेल्पलाइन, मनोवैज्ञानिक सहायता, समुदाय में जागरूकता कार्यक्रम और कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े उपाय.
0: And there is an important national mental health support service that people should know about. It's called TeleManas. The service provides 24/7 tele mental health support. In India, you can call number 1-144-16 or 18 alternatively 1-800-891-4416 for mental health support.
1: और अगर आप या आपका कोई जानने वाला किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो मदद मांगना कमजोरी नहीं है. याद रखना कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है, मदद मांगना असल में सहारे की ओर एक कदम है. युवाओं को भी ऐसी जगहों की जरूरत है जहां वे तनाव, असफलता, रिश्तों, अकेलेपन या फिर भावनात्मक मुश्किलों के बारे में खुलकर बात कर सके.
0: And World Suicide Prevention Day 2026 therefore comes with a simple but consequential message. Starting a conversation can be the beginning of support.

0: और श्रोताओं, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां आज पोरा पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पोरा छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ पर्व है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे रायपुर संवाददाता की रिपोर्ट।
1: छत्तीसगढ़ में आज पोरा पर्व के अवसर पर किसान अपने जीवन में विशेष स्थान रखने वाले पशुधन और कृषि उपकरणों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। विशेष रूप से बैलों का पूजन किया जा रहा है। खेती के काम में किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बैल केवल पशुधन नहीं बल्कि ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा के अभिन्न अंग माने जाते हैं। आज घरों में पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं, वहीं बच्चे मिट्टी से बने बैलों और अन्य पारंपरिक खिलौनों के साथ पोरा की खुशियां बांट रहे हैं। गांवों में परिवार और पड़ोसी मिलकर इस पर्व को उत्साह पूर्वक मना रहे हैं। पोरा पर्व हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का संदेश देता है। यह किसान के श्रम, पशुधन के महत्व और प्रकृति के प्रति सम्मान को रेखांकित करता है। बदलते समय के बीच भी पोरा पर्व छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति की उस जीवंत परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें माटी से अपनापन, श्रम का सम्मान और रिश्तों की मिठास समाई हुई है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
2: From Chhattisgarh now, we will head to Vishakhapatnam, which is set to host the 41st Indian Association of Tour Operators annual convention from today. The convention is expected to bring together around 900 to 1,000 tourism professionals, tour operators, policy makers and government representatives from across India and abroad. We have more details on this from our correspondent.
3: This IATO convention is organized under the theme of India, the world's next tourism opportunity, reflecting the

0: India's focus on expanding India's position as a major global tourism destination. The event is being organized with the support of the government of Andhra Pradesh and is designed to showcase the state tourism potential to a national audience. A major attraction will be presentation of Andhra Pradesh diverse tourism destinations including Visakhapatnam, Arakku Valley and other cultural and heritage circuits. Post-convention, tours have been planned to destinations such as Bojanakonda, Arakku Valley, Borra Caves as well as other locations in Andhra Pradesh and neighboring regions. Earlier, Andhra Pradesh Tourism Minister Kandula Durgesh has said that hosting the event will help position the state as a major global tourism destination and provide local stakeholders with great access to business opportunities. This prestigious event will welcome Union Minister for Tourism and Culture Gajendra Singh Shekhawat as the chief guest for its grand inauguration. Highlighting a strong commitment to responsible tourism, the convention offers massive concessions to local business, including a complete waiver of 10,000 rupees IATO one-time admission fee and free IATO memberships for Andhra Pradesh tour operators. Satyanarayana for Parikrama from Visakhapatnam.
1: So Jaya, as we know, New Delhi is transforming ahead of the 18th BRICS summit with heightened security, traffic restrictions, tightened airspace and a major city facelift, right?
2: बिल्कुल शगुन, और इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। आज से इस महीने यानी कि 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफॉर्म के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यह ब्रिक्स सम्मेलन 22 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है।
1: एंड नाउ Let's talk about the 7th edition of the Global FinTech Fest GFF 2026. One of the world's largest and most influential annual FinTech conferences is underway in Mumbai. The theme of GFF 2026, it is actually potential to impact agentic AI, tokenization, quantum, trusted, connected global systems for inclusive finance. Let's hear more details from our correspondent.
3: Today is the third day of the Global FinTech Fest in Mumbai. Addressing a session titled Agentic AI and the Future of Banking in a Billion User Nation, State Bank of India Chairman C.S. Shetty said that the next phase of India's banking transformation will be driven by artificial intelligence. RBI Governor Sanjay Malhotra, SEBI Chairman Tuhinkanta Pandey and former UIDAI Chairman Nandan Nilekani are scheduled to address various sessions on Agentic AI, tokenization and quantum technology today.
2: भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने महाराष्ट्र में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 शुरू करने की घोषणा की है। चयनित युवाओं को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने और विकसित भारत एट 2047 के विजन में योगदान देने का अवसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव के पुनर्गठन के अंतर्गत ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नवाचार और समाधान से जुड़े विचार प्रस्तुत करने के लिए पारदर्शी योग्यता आधारित मंच उपलब्ध कराना है। हमारे संवाददाता से और ब्यौरा।
4: महाराष्ट्र में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 का राज्य स्तरीय आयोजन 2 दिवसीय होगा। महाराष्ट्र को गोवा के साथ कोंकण फाइनेंशियल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी रीजन में शामिल किया गया है। इस क्षेत्र का मुख्य विषय भारत की रचनात्मक सांस्कृतिक पर्यटन और नवाचार क्षमताओं का उपयोग कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और समावेशी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इस बारे में बताते हुए माई भारत के डिप्यूटी डायरेक्टर अनूप इंगोले बताया,
5: कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद 2027 की शुरुआत की गई है। इसमें 15 से 29 वर्ष के युवा अपनी नवाचारपूर्ण सोच, नेतृत्व क्षमता और नए विचार प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित युवाओं को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के सामने अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा।
4: विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2027 के 6 प्रमुख ट्रैक है। विकसित भारत चैलेंज, कल्चरल ट्रैक, डिजाइन फॉर भारत, हैक फॉर सोशल कॉज, यूथ एंटरप्रेन्योर्स चैलेंज और यूथ पार्लियामेंट। चयन प्रक्रिया विकसित भारत क्विज, निबंध चुनौती, जिला चैंपियनशिप, राज्य स्तरीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग और राष्ट्रीय विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के विभिन्न चरणों से होकर गुजरेगी। महाराष्ट्र में जिला स्तर पर युवा क्षेत्रीय विषय के अनुरूप स्थानिक प्राथमिकताओं और अवसरों पर प्रस्तुतियां

0: Agha Jatin became its commander-in-chief.
1: Jatin's clarion call, Amra Morbo, Jogat Jogbe, meaning we shall die to awaken the nation, evoked the currents of Indian nationalism. Jatin inspired many young minds, including Ras Bihari Bose, who described Jatin a real leader of men with fiery energy and personality.
0: In the year 1914, when the First World War broke out, Jatin approached the German Crown Prince for the delivery of arms for his fight against the British. M.N. Roy was asked to coordinate with the Germans for the arrival of the shipment.
1: Jatin, along with his followers, was hiding near Balasore, where the shipload of arms from Germany was planned to be received. But the information of this consignment was leaked by an Irish agent and the British attacked them.
0: While the British side was armed with highly sophisticated rifles, Jatin and his team fought with pistols. Jatin and his followers fought hard.
1: But Baga Jatin was seriously wounded in the battle and the next day he succumbed to injuries in Balasore City Hospital. Govind Ballabh Pant, a legal luminary and a freedom fighter, was born on 10th of September 1887 in Khunt village near Almora.
2: आज हम भारत के एक ऐसे ही महान नायक को याद कर रहे हैं जिन्होंने जमीन को खोदकर हमारी गौरवशाली अतीत को बाहर निकाला। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण से अलंकृत भारत के सबसे वरिष्ठ पुरातत्वविद प्रोफेसर ब्रजबासी लाल यानी बीबी लाल जी को आज उनकी पुण्यतिथि है। 101 साल का लंबा और ऐतिहासिक जीवन जीने वाले प्रोफेसर लाल ही वो शख्स थे जिन्होंने 1970 के दशक में अयोध्या के विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के खंभों के होने की पुरातात्विक खोज की थी जिसने भारत के इतिहास को एक नया मोड़ दिया।
3: Well, he was the Director General of the Archaeological Survey of India between 1968-1972 and has worked extensively on archaeological sites. I also told you this was associated with Harappan civilization and Mahabharat.
2: जी, इसी के साथ हम याद कर रहे हैं बच्चों के चहेते और बंगाल के मशहूर उपन्यासकार तथा कवि सुकुमार राय जी को जिन्होंने अपनी कविता और कहानियों से ना जाने कितने बचपन सवारे हैं। बंगाली साहित्य के स्तंभ सुकुमार राय जी की आज पुण्यतिथि है। शायद बहुत कम लोग इन्हें ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर सत्यजीत रे के पिता के रूप में जानते होंगे लेकिन सुकुमार राय जी खुद में यानी कि अपने आप में एक ऐसी संस्था थे जिन्होंने भारतीय बाल साहित्य का चेहरा बदल दिया। तो आइए सुकुमार राय जी की पुण्यतिथि पर उनके उस जादुई बचपन के संसार में गोता लगाते हैं और सुनते हैं उनकी कलम से निकला ये बेहद लोकप्रिय और सदाबहार बाल गीत बाबूराम सापुरे।

0: आज ही हिंदी साहित्य जगत के शैली सम्राट कहे जाने वाले महान कथाकार राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह जी की जयंती है। बिहार के सूर्यपुरा रियासत के राजा होने के बावजूद उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदी गद्य को सजाने और संवारने में लगा दिया। उनकी भाषा में ऐसी नजाकत और शिल्प था कि पाठक उनकी लिखी कहानियों को शुरू से अंत तक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते थे। साल 1913 में प्रकाशित उनकी अमर कहानी कानों में कंगना आज भी हिंदी साहित्य की सबसे बेहतरीन और कालजयी प्रेम कहानियों में गिनी जाती है।
1: Today, well, we are also remembering Tommy Overstreet, the country musician, and he has often referred to as T.O. by fans and radio disc jockeys as well.

अब रुख करते हैं भारतीय सिनेमा के ऐसे नायाब हीरे की तरफ जिन्होंने अपनी अदाकारी से हर किरदार को जीवंत कर दिया। जी हाँ, बात कर रहे हैं दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता अतुल कुलकर्णी की। आज इनका जन्मदिन है। और श्रोताओं, जब हम अतुल कुलकर्णी की बात करते हैं तो फिल्म रंग दे बसंती के उस

0: लड़की को कोई कैसे भूल सकता है, तो आइए इसी फिल्म के आइकॉनिक गाने को सुनते हैं।
1: तुम मैं चल गया, सूरज को मैं।
0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो परिक्रमा के संग को यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं, इसलिए टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी विचार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं असीमित हैं।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: श्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान के विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवम्बर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। इस बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज कश्मीर में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों और कार्यक्रमों तथा पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की गतिविधियों की समीक्षा की। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उधर भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. He was virtually addressing at the International Space Summit in Paris today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole and Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO.
2: Chinese President Xi Jinping will visit India this week to attend the BRICS summit in New Delhi. Chinese Foreign Ministry today announced that at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President Xi will attend the 18th BRICS summit on 12th and 13th of this month. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. Ahead of the two-day BRICS summit beginning in New Delhi on Saturday, the police has imposed a blanket ban on the operation of drones and several other small aerial platforms across the national capital till Monday, citing heightened security concerns. Delhi Police Commissioner Anurag Kumar issued the order as part of enhanced security arrangements for the summit. The Delhi Police said the decision was taken based on intelligence inputs suggesting that anti-social elements or terrorist groups could misuse such aerial platforms to pose a threat to public safety, VIPs and vital government installations during the period. Secretary of Ministry of Information and Broadcasting Chanchal Kumar today reviewed the functioning of the ministry's media units in Kashmir. He reviewed news and programs of Akashvani and Doordarshan and took stock of Press Information Bureau and Central Bureau of Communication outreach activities. Mr. Kumar stressed strengthening the social media presence, particularly on Instagram, with engaging digital content. He also called for intensified campaigns on Nasha Mukt Bharat and Swachhata, along with better coordination among all media units for wider public outreach. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi today met eminent philanthropist and 50th Imam of the Ismaili community, Prince Rahim Aga Khan V, in New Delhi today. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that they also discussed ways to further strengthen the cooperation between India and the Aga Khan Development Network in sectors such as sports and education. In a social media post, Mr. Modi said he fondly recalled the late Aga Khan IV and his enduring contributions to the development efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar also met the eminent philanthropist. Prince Rahim Aga Khan V will be on a visit to India till the 15th of this month. Flood situation in Bihar has improved slightly as water levels receded in several rivers. Relief and rescue operations

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताजा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है नौवा राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability.

0: जरूर। 11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

इसी के साथ नईम अख्तर आपसे इजाजत चाहती है गाते गुनगुनाते कार्यक्रम यहीं खत्म करने की, लेकिन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपके लिए है

0: अरबल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से तय होता है। ऐसे में स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं बल्कि उनके ज्ञान, कौशल, सोच और व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला होते हैं। इसी दृष्टिकोण को स्कूल स्तर पर लागू करने की दिशा में 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को आदर्श और उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में विकसित करना है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पीएम श्री योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई, इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में कैसे विकसित किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को यहाँ किस तरह लागू किया जा रहा है और इन स्कूलों से आसपास के दूसरे स्कूलों में भी बदलाव लाने की क्या उम्मीद है। श्रोताओं, भारत में स्कूली शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। देश में 14,71,000 से अधिक स्कूल हैं, जहां 24,69,00,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इतने बड़े शिक्षा तंत्र में केवल कुछ स्कूलों की सुविधाएं बेहतर करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत ऐसे संस्थानों की है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीक, समावेशिता और संवहनीय विकास का उदाहरण भी पेश कर सकें। पीएम श्री योजना इसी सोच को स्कूल स्तर पर लागू करने की पहल है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि पीएम श्री स्कूलों की परिकल्पना क्या है और इस योजना के तहत अब तक किस तरह की प्रगति हुई है।
2: श्रोताओं, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके उन्हें ऐसे आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने का उदाहरण पेश करें। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 27,360 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। योजना के तहत स्कूलों में सिर्फ भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बल्कि सीखने का सुरक्षित, स्वागतपूर्ण और उत्साह बढ़ाने वाला वातावरण तैयार करने पर इस योजना का जोर है। जुलाई 2026 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों के तौर पर किया जा चुका है। इनमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के अंतर्गत आने वाले स्कूल भी शामिल हैं। पीएम श्री स्कूलों को केवल अपने विद्यार्थियों तक सीमित संस्थान नहीं माना गया है, इन्हें अपने क्षेत्र के लिए मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है ताकि ये आसपास के स्कूलों के साथ अपने अनुभव और बेहतर तौर तरीके साझा कर सकें। मार्गदर्शन, सहयोग और क्लस्टरिंग के माध्यम से इन स्कूलों से व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है। यानी एक स्कूल में विकसित होने वाली अच्छी शिक्षण पद्धति और व्यवस्थाएं धीरे धीरे आसपास के दूसरे स्कूलों तक भी पहुंचें। इन स्कूलों में शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक और परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय सीखने के अधिक व्यापक अनुभव पर जोर दिया जाता है। अनुभवात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के साथ शुरुआती वर्षों में खेल और खिलौनों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। बस्ता मुक्त दिनों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, स्थानीय कला और शिल्प के अध्ययन तथा पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। पीएम श्री स्कूलों में गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समावेशी शिक्षा भी है। अलग अलग सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा में शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाई विविधता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है।
1: श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को स्कूल के रोजमर्रा के वातावरण में उतारना। इसके लिए शिक्षा के साथ तकनीक कौशल, खेल, कला, जीवन कौशल और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं को भी स्कूल विकास का हिस्सा बनाया गया है। आइए अब जानते हैं कि पीएम श्री स्कूलों में इन क्षेत्रों पर किस तरह काम किया जा रहा है और स्कूलों का चयन किन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाता है।
3: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ 21वीं सदी के जरूरी कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाता है। सीखने का वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें और उन्हें सुरक्षित, समावेशी और सहयोगी माहौल मिले। तकनीक भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम श्री स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्टेम जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और उनके आदान प्रदान को आसान बनाते हैं। इससे डिजिटल साक्षरता के साथ साथ तकनीकी दक्षता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा का दायरा खेल, कला और जीवन कौशल तक भी बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, सामाजिक और भावनात्मक कौशल तथा संवाद की क्षमता को विकसित करना है। यानी विद्यार्थी केवल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार ना हो बल्कि भविष्य की शैक्षिक, पेशेवर और सामाजिक चुनौतियों के लिए भी सक्षम बने। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक और स्कूल नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के व्यावसायिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी DIET के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रधानाचार्य को शैक्षिक नेतृत्व, स्कूल प्रबंधन और योग्यता आधारित शिक्षण योजना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षकों को समग्र प्रगति कार्ड, स्कूल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण तथा अन्य क्षेत्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की एक और विशेषता है इनका चयन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाना। इसके लिए चैलेंज मोड अपनाया गया है। चयन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर करते हैं। दूसरे चरण में UDISE+ के आंकड़ों और निर्धारित मानकों के आधार पर पात्र विद्यालयों की पहचान की जाती है। तीसरे चरण में पात्र विद्यालय चैलेंज आधारित चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और निर्धारित मानकों को पूरा करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारी निरीक्षण के माध्यम से शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हैं और चयनित विद्यालयों की सूची की सिफारिश शिक्षा मंत्रालय से की जाती है। अंतिम चयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। चयन के लिए स्कूलों को कुछ न्यूनतम मानक पूरे करने होते हैं। इनमें पक्की इमारत, सुरक्षित और सुगम आवागमन, सुरक्षा उपाय, अलग अलग शौचालय, पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकालय या खेल सुविधाएं, पर्याप्त नामांकन और शिक्षकों के लिए पहचान पत्र जैसी व्यवस्थाएं भी चयन के मानकों का हिस्सा हैं। चैलेंज विधि के तहत शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 70% और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक हासिल करना जरूरी है। इस मूल्यांकन में अवसंरचना के साथ साथ सीखने के परिणाम, शिक्षण शास्त्र, पीएम पोषण, व्यवसायिक शिक्षा, हरित पहल और विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
1: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के माध्यम से स्कूलों को हरित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्कूलों की गुणवत्ता के एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में पर्यावरण के अनुकूल तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह स्थानीय उद्यमिता इकोसिस्टम से जुड़ाव और 21वीं सदी के कौशलों पर जोर विद्यार्थियों को भविष्य की दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम श्री योजना केवल कुछ स्कूलों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि ऐसे मॉडल विकसित करने की कोशिश है जिन्हें दूसरे स्कूल भी अपना सकें। आखिरकार किसी शिक्षा व्यवस्था की सफलता केवल स्कूलों की संख्या से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि वहाँ पढ़ने वाला बच्चा कितना सीखता है, कितना सोचता है, अपने ज्ञान का कितना इस्तेमाल कर पाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार होता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण दीप सिंह। नमस्कार।
4: EM आकाशवाणी।

0: Mantra.
1: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
2: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं।

0: स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद निखिल।
0: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
2: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसेस राइज मार्जिनली, सेंसेक्स एड्स ओवर 100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,450। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सेज फिनटेक कंपनी शुड ट्रीट कस्टमर डेटा एज अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर दैन एज अ बिजनेस एसेट। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज अराउंड 4%, Brent crude trades above $100 a barrel.
0: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी, निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर।
2: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया। इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से ऊपर कर बढ़त की स्थिति में देखे गए।
2: Benchmark domestic equity indices ended 0.2% higher today, snapping a three-day losing streak. Sensex gained 138 points to close at 74,903. Nifty added 46 points to settle at 23,478. However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावरग्रिड 2.3%, एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 2.4%, टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंट में 1.1% की गिरावट देखी गई।
2: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,502 companies declined, 1,826 companies advanced and 199 companies remain unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई। क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उस पर डालेंगी?
1: तो निखिल, हालांकि मैं कहना चाहूँगा कि महरम का अगर काम करे आज का बाज़ार की थोड़ी जो मामूली बढ़त थी, पर ऐसा नहीं है। बाज़ार आज काफ़ी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे का दौर रहा बाज़ार में और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाज़ार ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी, यानी ज़्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में वो वीक है, कमजोर है। अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दोबारा से उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है। और उसका मुख्य कारण देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, खासतौर से मैं कहूँगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो काफी बढ़ रही हैं,

0: any investor in the world can go to US markets, invest in government bonds and get that kind of a yield. So, however, I'm looking at those numbers only as a pointer to the confidence in Indian economy vis-a-vis the foreign investors. So clearly, I think while the interest rates we offered on FCNRB deposits were much higher, in the range of about 6.5%, I think the broader message was that foreign investors will put in money into India if they have the opportunities. And for that, they need the global situation to stabilize.
1: Puneet, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा IT sector की ओर ले जाना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए IT sector के प्रति, और खासतौर पर ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप की स्थिति अलग है, मिड कैप और स्मॉल कैप की स्थिति अलग है, तो कैसे एक रिलेशन बना सकते हैं तीनों में?
0: निखिल, देखिए IT sector के कि जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इन टर्म्स ऑफ जो भारत का जो एक साख है पूरी वर्ल्ड में, वो आईटी सेक्टर से बनी है. पिछले दिनों हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा वहाँ पर हमने कुछ कमी देखी है वहाँ पर कॉन्फिडेंस में, और हम देख रहे हैं कंपनियों के शेयर्स में भी गिरावट आई है, कुछ हद तक रेवेन्यूज में भी थोड़ा चैलेंज रहा है. तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, थोड़ा सा मॉडरेशन का फेज है आईटी सेक्टर में. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए आईटी सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के आईटी सेक्टर में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन आईटी.
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि जुलाई में ये 24,697 करोड़ रुपए था. वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और अगस्त में यह बढ़कर 32,297 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का स्थान रहा. हालांकि लार्ज कैप और इक्विटी फंड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी दर्ज हुई. दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में निवेश भी 66.6% से ज्यादा बढ़ा और इसमें लगातार तीसरे महीने निवेश सकारात्मक रहा. हालांकि डेट फंड में तस्वीर इसके उल्टी रही, जहां जुलाई में 1,87,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश आया था, वहीं अगस्त में डेट फंड से 8,127 करोड़ रुपए की निकासी हुई है. कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, SIP और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है. पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देखें एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है.
0: देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी
1: जी.
0: तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में. कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड से पैसा डाल रहे हैं. देखिए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज, जो AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए की AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए. और जो इसमें भी जो खास बात है, आपने जो बात बताई कि 32,000 करोड़ रुपया SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो हर महीने निवेशक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है वो. तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक खबर लगती है इसमें, और आई होप कि दिस कंटिन्यूज, यही हमारा स्ट्रेंथ रहेगी.
1: इसमें एक चीज ये भी आई है सामने निकल करके कि इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड जो है वो निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
0: देखिए, बहुत एक अलग चीज है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में जाता है या इंडेक्स फंड में जाता है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो कि ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरा जिसमें रहता है उसमें ज्यादा रिस्की है, वहां पर कम निवेश होता है। पर जैसा हमने अभी आप और हम बात कर रहे थे पहले कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा पैसा डाला है पिछले दिनों, वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगता है, तो वो एक ट्रेंड देख रहे हैं। पर ये देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा रहता नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप्स और जो फ्लेक्सी कैप्स जो फंड्स हैं वो ज्यादा नेचुरली
1: अट्रैक्ट। इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, 66.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
0: देखिए, गोल्ड की चमक तो बनी हुई है भारतीय निवेशकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है।
2: वेल, गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली एज अराउंड 4,400 US dollars पर ट्रॉय आउंस व्हेन इट हैड टच 4,000, येट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन ETF रिगार्डिंग गोल्ड, बट डेट फंड्स देयर इज एन आउटफ्लो इन इट एंड इनफ्लो इन ETF गोल्ड। व्हाई इज दैट द केस? बिकॉज़ देयर इज सो मच मनी नाउ ऑल्सो गोइंग इनटू ट्रेजरीज, फॉर इंस्टेंस वी मेंशनड अबाउट दैट अर्लियर। Why is it that debt funds are seeing an outflow?
0: So debt funds usually see a very volatile flow because depending on the money, because mostly debt funds come from corporates. So whenever they have surplus cash lying in the banks, for short term they put money into debt funds. Of course, in the month of September we have advanced tax payments made out. So I believe that a lot of liquidity would have gone to advanced tax payments, and therefore the flows in debt funds were lower.
2: In more news, RBI Governor Sanjay Malhotra said that fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. The RBI Governor stressed that fintech companies must act as partners in responsible financial innovation and handle customer data responsibly. He emphasized that technology has made banking faster, cheaper and more secure, and noted that India is now the world's third largest fintech ecosystem. SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey stressed that technological innovation should not compromise investor protection, market integrity and financial stability.
3: Our security markets has grown rapidly and technology has been central to that growth. Digital onboarding, electronic payments, robust clearing and settlement, and the ability to trace transactions to the ultimate investor have made participation wider and more secure. But as markets become larger, faster, and more interconnected, regulatory risk also changes. A vulnerability in one part of the ecosystem can travel much faster. This calls for resilient infrastructure and a regulatory approach that can identify such risks.
2: So when we talk about fintech companies, NBFCs, banking sector, today, for instance, BankX actually went up. Their business is booming really because capital and finance is a very important requirement in people's everyday lives, including the operations of companies. Fiduciary responsibility regarding customer data. How do you see privacy playing a important role here versus using customer data as a means really to approach customers and sell loans?
0: So Arjun, you know, the problem is, of course, there is this lot of intrusion by in the name of financial inclusion, there's also intrusion by financial people who are sellers of products. However, you will realize that trust is the central pillar of any financial system. Whether we have the old system or we have the new fintech driven system, it is the customer's trust in the institution where they have put their money which is central to conducting transactions. So while we have this new technology available which has made things much faster, much better, far more transparent, no doubt about it, the central requirement that it continues to be trustworthy, people have faith where their money is safe, and there are no instances of fraud or money being lost through these new technology tools. I think therefore this kind of caution is very important. So while we advance on fintech front, we need to be careful about regulation, we need to be careful about what is the safety of people's money in the system.
2: Let's move on to the crude oil market now. Global crude oil prices surge around 4% today, with Brent crude remaining above $100 a barrel. Traders brace for deeper supply disruptions after Iran and the US launched their largest attacks on shipping since the conflict began. By the time of the latest report, Brent crude was trading 4% up at $105.25 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 4.3% higher at $100.18 per barrel. Meanwhile, U.S. President Donald Trump yesterday predicted that the war with Iran would end immediately after the U.S. midterm elections in November, adding that oil prices would fall sharply once elections are over. How optimistic are you about this latest projection by U.S. President Donald Trump regarding the midterm elections? Because right now, Iran may attack a carrier of the U.S. and the U.S. is then attacking Iran's oil refineries. It seems to have taken a very ugly turn now, especially when you're talking about crude oil and its extraction from the earth, refining of it, the actual business of crude itself.
0: So, you know, it seems that the entire war in the Middle East has boiled down to control of the oil trade, and Iran of course is interested that the oil trade is disrupted, and if the oil prices go up, then it increases pressure on the US to wind down its campaign. America has been claiming that they will bring the oil prices down, they'll bring inflation down. They haven't succeeded so far. As you have just read out, Brent crude prices are once again at $105 per barrel level. It is a matter of great concern for India, because India, of course, is the world's second largest importer of crude oil. And a huge amount of external resources are now committed to importing energy for us in terms of crude oil, in terms of LPG, LNG. We import this whole gamut of energy products.
2: So, and sulfur as well for fertilizers.
0: Sulfur for fertilizers. And in fact, and many other products which are linked to crude oil as an input. So I think it's a matter of great concern for us. I hope, it's very difficult to predict what will happen, because this is such a volatile situation. Nobody can predict what will happen tomorrow morning. But I hope that oil prices come down. $105 is very difficult for India. And I think we are seeing the impact of that in terms of inflation.
2: In more news, Chinese President Xi Jinping will visit India this week to attend BRICS Summit in New Delhi. Chinese Foreign Ministry today announced that at the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President Xi will attend the 18th BRICS Summit from the 12th to the 13th of this month. The visit is expected to be a high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia, and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. It's a fully loaded story because, you know, you have a border dispute with China. They have been partnering Pakistan in their geopolitics against India. India is buying oil from Russia at a discount, which is advantageous to India. And that's been opposed by the US. And Prime Minister Modi has been pleaded by global leaders that please mediate the Russia-Ukraine war. How do you see the BRICS summit here in India?
0: So BRICS summit in India really comes at an extremely important point, because this, like you said, I mean, this story has so many subtexts, so many things that you can read between the lines, because India has a very difficult relationship with China. While we have a very large trade with them, our economies are interdependent in many ways, and yet we have a difficult situation with them on borders. There's a lack of trust between the countries. We have had very long-standing dispute, border dispute with between the two countries. So it's a very difficult relationship which operates at many layers. Hopefully, our leaders are able to resolve these differences for betterment of communities on both sides of the border. And India, China, Russia, I think there's, and Brazil particularly lately, I think these four countries really comprise a very significant part of global economy, and therefore the BRICS summit, I think, at this point of time being held in India and all the top leaders attending that summit, I think that is very, very significant, and hopefully something better will come out of this.
1: Aur Asia Europe bazaron par nazar dalte hain. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज 4% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 225.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों में ताजा समाचार मिलने तक लंदन का फुटसी 100 0.5% की सुस्ती, जबकि जर्मनी का डेक्स बिना किसी उतार चढ़ाव के कारोबार कर रहा था। अपनी थोड़ा सा बढ़कर के दायरे में अगर देखें तो बैंक ऑफ जापान की नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होनी है 17 और 18 सितंबर को, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी क्या होगा अगर रेट बढ़ाए जाते हैं उनकी तरफ से। और दूसरी चीज जो अब हम देख रहे हैं पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट में महंगाई का दबाव आपको महसूस हो रहा है या ब्याज दरों का कोई दबाव महसूस हो रहा है जिसका असर मार्केट में पड़ेगा?
0: बिल्कुल निखिल, अगर आप देखिए बैंक ऑफ जापान की आपने बात करी तो जापान में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है बिकॉज से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड हमें मालूम चलता है, वो अब 3% के आसपास करीब 3% 10-year बॉन्ड यील्ड जापान में हो गई है। ये 0.25 से ऊपर बहुत दशकों तक कई डिकेड्स तक ये ऊपर नहीं गई और अब अचानक अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी ये काफ़ी दबाव पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़े जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा। कारण यह है कि जापान से काफ़ी बड़ा करेंसी ट्रेड होता है, जापान से करेंसी मिलती है लोगों को, देशों को निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज डिस्टर्ब्ड होंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज में रुकावट आएगी, जापान अमेरिका में भी इसका असर पड़ेगा और भारत पे भी असर पड़ेगा। तो वी शुड रियली वॉच बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स वेरी केयरफुली।
2: एंड इवन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक व्हिच हैज रेज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 2.5%, बैंक ऑफ जापान इज एट 1%, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, एनर्जी constituting 14.3% rise as far as Europe is concerned.
0: Absolutely, Arjun. I think the elephant in the room really is the inflation and inflation which has been caused by high energy prices. So central banks have limited choices. Let's see what they do.
2: Moving on to the US stock market, Wall Street ended lower for the third consecutive session yesterday as rising bond yields and elevated crude oil prices continued to weigh on investor sentiment. Among the major indices, Dow Jones Industrial Average fell 0.8%, Nasdaq Composite Index declined 0.6%, and the S&P 500 lost 0.5%. Market participants are awaiting the producer inflation data later tonight, which could further clues on the Fed Reserve's monetary policy outlook. It seems central banks all over the world are concerned about inflation, and inflationary data is due there.
0: Absolutely, and US Fed, like you said, Bank of Japan, similarly US Fed, these are two most important central banks in the world. Both of them are going to take a view on inflation, and it's not going to be benevolent because I'm sure inflationary pressures are very high. They will try to address this.
2: In more news, global investment bank Jefferies has said that India's new industrial revolution is being driven by a large domestic market, rising private sector participation and sustained policy support. In a report published yesterday, it pointed to measures such as opening space to private players, tax holidays for data centers, incentive schemes for semiconductors, electronics and solar localization measures and government GPU purchases as key enablers of growth across emerging sectors.
1: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,53,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि ETF में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं?
0: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मैं अपने जो नज़र है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा, आने वाला सप्ताह उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और एनी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड। तो गोल्ड एक नाजुक मोड पर अभी खड़ा हुआ है।
1: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाज सेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में, महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
3: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS Summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit, beginning at Bharat Mandapam on Saturday, brings together the world's major emerging economies. India is the current chair of the influential grouping. Top leaders of the grouping include Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin will be attending the BRICS Summit. Chinese Foreign Ministry today said President Xi will be arriving in India this week to take part in the summit at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit comes amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. Earlier this week, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal in a media briefing said Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders on sidelines of the BRICS summit. Delhi police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit. Giving details about the security arrangements, Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal said that arrangements have been planned to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by Aga Khan Development Network. She said it demonstrates how non-profit organizations working in partnership with the government can improve people's quality of life. During Prince Aga Khan V's interaction with the Vice President at Uprashtrapati Bhavan, the two leaders discussed the Aga Khan Development Network's contributions to water and sanitation, women-led self-help groups, education and community development, and appreciated its initiatives in East Africa and Afghanistan. Prime Minister Narendra Modi said during their meeting, they discussed ways to further strengthen India's partnership with the Aga Khan Development Network. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh today said that India is the world's third largest startup ecosystem with more than 2,30,000 startups. The minister today launched the curtain raiser for the Emerging Science, Technology and Innovation Conclave 2026 in New Delhi. He said more than 50% of startups are now coming from small towns and not metros, which reflects the widening reach of entrepreneurship and innovation across the country. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. Now India will face the winner of the quarter-final clash between South Korea and Malaysia in the semi-final on Saturday. The Indian men's team has already entered the semi-finals of the Junior Asia Cup. In women's cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final of Asia Cup in Dubai at 8 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत श्रीलंका रक्षा सहयोग से मजबूत होती क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन जी चौधरी।
1: हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, जो रक्षा के विषयों के विश्लेषक हैं। और आकाशवाणी में सर आपका स्वागत है।
2: जय हिंद अर्जुन जी।
1: जय हिंद सर। और आज हम बातचीत करेंगे इंडिया श्रीलंका के साझेदारी को लेके। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, हम शुरुआत करते हैं किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो दर्शन हुआ है श्रीलंका में इसी महीने, ये 38 साल बाद हुआ है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है सर?
2: अपने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी जो श्रीलंका, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, 38 साल के बाद गए हैं। श्रीलंका और भारत के जो रिश्ते हैं आपको बहुत बहुत पुराने हैं, 2500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। ऐसा कोई हिंदुस्तान में आदमी नहीं होगा जो श्रीलंका के बारे में नहीं जानता है। और यही कारण है कि श्रीलंका के साथ एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, और जिस प्रकार से श्रीलंका में भी उड़ाव चढ़ाव होता रहता है, तो उसमें जिस प्रकार से भारत ने उनकी मदद की, वो भी इस बात के उनको एहसास है कि भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत ने उनकी जबरदस्त सहायता की। और यही नहीं, ये इकोनॉमिकली जब इवन जब साइक्लोन आया उधर भी की। तो ये ऐसे संदर्भ में जब हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जी जब गए तो उन्होंने कुछ एक डिफेंस एमओयू दस्तखत किए, और वो बहुत जरूरी है। और जो कैपेसिटी और जो कैपेबिलिटी हमने अपने L-70 को दी, वही उनको देने की कोशिश की है। जैसे हम लोग ने उसको ड्रोन किलर अपग्रेड किया है। अब ये कह करके कि भाई 1960 की पुरानी गने इसको आउट कर दो ना, उसको जबरदस्त इस्तेमाल किया और उसका हम लोगों ने बहुत फायदा देखा। तो श्रीलंकन एयरफोर्स ने भी अपने एयर डिफेंस के लिए इन गन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोगों ने उन्हें अपग्रेड करने के लिए कहा है कि हम उन्हें अपग्रेड करके देंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे हमारे द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो इनको अपग्रेड करेगा। तो जैसे मैं बता रहा था, ड्रोन किलर इलेक्ट्रिक ड्राइव, जैसे कि जल्दी एंगेजमेंट करने में फायदा हो जाए, उसको डिजिटल ब्रेन का हम लोगों ने इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम में किस प्रकार से उसको एक रियल टाइम में लाना है, जैसे कि जब सिर्फ आदमी काम करता है तो थोड़ा वक्त लगता है, तो अगर तरीके से डिजिटल ब्रेन, इलेक्ट्रिक ड्राइव, उसमें डे एंड नाइट विजन कैपेबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करना, तो ये सब चीजें जो है हम लोगों ने कहा है हम उनको मेंटेन करेंगे और हम उन्हें प्रदान करेंगे, जिससे कि उनका जो एयर डिफेंस है वो और सुदृढ़ हो जाए। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने उनके साथ यूथ एक्सचेंज यानी कि NCC, किस प्रकार से दोनों देशों के जो NCC कैडेट्स हैं आएंगे जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, जो हम लोग करते हैं NCC में, ये एक ऑफिशियल हो जाएगा तो अच्छा है। और जो यूथ एक्सचेंज के द्वारा जो कैडेट्स हैं, जो आदान प्रदान NCC के होगा, उसके द्वारा दोनों देशों के बीच में और संबंध अच्छे बढ़ेंगे। उतना ही नहीं, जो NDC है जिसमें श्रीलंका के ऑफिसर इधर आते हैं, उनका भी नेशनल डिफेंस कॉलेज है, तो दोनों कॉलेजेस है मिल करके किस प्रकार से शेयर स्ट्रैटेजिक विजन एंड हाउ टू गो अबाउट इट, तो ये देख करके होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब्स जो है वो श्रीलंका में हम लोग लगाएंगे, जिससे कि जो आधुनिकरण है अपने इक्विपमेंट का, उसमें इस प्रकार से इसको इनकॉर्पोरेट और फिर इसका कैसे इस्तेमाल होगा।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रीलंका की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के तहत कोलंबो में INS उदयगिरी पर आयोजित डेक रिसेप्शन को संबोधित किया। उन्होंने भारत और श्रीलंका की रक्षा प्रणालियों के बीच चल रहे परियोजनाओं और समझौतों, ज्ञापनों, MOUs पर बात की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: After our discussions, we concluded 3 memoranda of understanding in the defense domain, namely MOU on upgradation of the L-70 guns for SLAF, MOU on NCC cooperation between India and Sri Lanka, MOU on cooperation between NDC, India एंड एनडीसी श्रीलंका।
1: लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आपने हमें बताया कि किस तरीके से एमओयूज के हस्ताक्षर हुए हैं और इसमें L-70 गन्स और उसके साथ विद्या संबंधी के भी कई चीजें आई हैं। नेशनल डिफेंस कॉलेजेस का इंस्टीट्यूशनल टाई अप्स हुई हैं, बांधे हुए हैं एनसीसी दोनों देशों के, और स्थापना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब का जिसमें भारतीय टेक्नोलॉजी असिस्टेंस सहायता का प्रयोग हुआ है। अब आप बात करिए सर मैरिटाइम सिक्योरिटी के बारे में, जहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग और पायरेसी जैसे

0: इश्यूज को भी एड्रेस किया गया है और यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम पहले से स्थापित की गई हैं, ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और जो महासागर विजन है वो क्या है सर?
1: आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मैरिटाइम को लेकर के भारत और श्रीलंका के बीच में जबरदस्त एक सहयोग है और ये जो सहयोग है जिसे प्रधानमंत्री ने उन्हें नाम दिया महासागर, यानी कि म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन, और ये बहुत जरूरी है ये महासागर, और खासकर जब श्रीलंका भी एक आइलैंड पूरा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, हम लोगों का भी जो कोस्ट तकरीबन 7,500 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन है अपनी, तो उसको देखते हुए और बहुत जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में अगर मैरिटाइम सर्वेलेंस होगा, दोनों देशों के बीच में ट्रेनिंग होगी इसको लेकर के, तो चाहे फिर वो डोमेन में आते हैं जैसे इलीगल फिशिंग हुआ, सस्पिशियस वेसल्स को देखने के लिए कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई नार्कोटिक ट्रैफिक कर रहा है, तो ये सबको देखते हुए तो बहुत जरूरी है। और इतना ही नहीं है, क्योंकि एक आइलैंड होने के नाते कहीं ना कहीं कहीं साइक्लोन या कुछ ऐसे बहुत पहले सुनामी आई थी, तो हमने देखा कि अगर दोनों देशों के बीच में संबंध बहुत अच्छे हैं और हमारा पड़ोसी है, तो वी शुड बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर सिर्फ यही नहीं कि उनको इकोनॉमिकली मदद करे, पर हर चीज में उनको लगना चाहिए। या अभी जैसे हम लोगों ने देखा जब वहां पे आर्थिक श्रीलंका में बहुत खराब हो गई थी, तो भारत ने IMF के लोन देने से पहले, वो तो एक साल के बाद आया, उससे पहले ही उनकी मदद की और उनको जो चाहा, चाहे वो खाने के मामले में है, दवाइयां हो या कैश हो, जो भी उनको चाहिए था क्रेडिट लाइन दिया। तो ये जो बातें है वो भी छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, $4 अरब था। अगर हम देखें तो IMF का जो लोन आया था वो तकरीबन $2.5 बिलियन का था, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, फर्स्ट रिस्पॉन्डर, क्योंकि हम आपके पड़ोसी हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है और हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और ये जो मदद है दोनों के लिए, इस मदद से जो इंडियन ओशन रीजन है, सिक्योर सी लेन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, एक दूसरे के बारे में समझना, काउंटरिंग टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, स्मगलिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, ये जो है अगर छोटी मोटी बोटे जो इधर उधर घूमती है पता नहीं चलता है, या फॉरेन रिसर्च वेसल्स आकर के डॉक कर जाती है उसके बारे में पता नहीं चलता है, तो कम से कम ऐसे नहीं होना चाहिए कि श्रीलंका को कल कोई ऐसा खतरा हो या वहां पे कोई आए जिससे भारत को उसका खतरा हो, तो दोनों मिल करके यकीन करेंगे कि कम से कम इंडियन ओशन रीजन के लिए ये बहुत जरूरी है, ये शुड बी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, वहां पे कोई ऐसे ना हो कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, ऐसे नहीं, हम यकीन कर रहे हैं ये जो इलाका है इंडियन ओशन रीजन उसमें दोनों मिल करके हम काम करेंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरा जैसे आप कह रहे थे जो L-70 गन्स है उसका भी मकसद वही है कि एयर डिफेंस प्रोवाइड करना श्रीलंकन फोर्स को, और किस प्रकार से हमने उनकी मदद करनी है, अपडेट करना है, तो बेसिकली क्योंकि रक्षा मंत्री गए हैं तो खासकर जो रक्षा को लेकर के जो हम लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, उसको लेकर के चाहे वो मैरिटाइम सर्वेलेंस के लेकर के हो या डिजास्टर के रिस्पॉन्स लेकर के हो या ज्वाइंट एक्सरसाइजेस को लेकर के हो या मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर के हो, तो ये सब है। या INS उदयगिरी जो है अभी वहां पे डॉक है, और वो INS उदयगिरी डॉक होने का मकसद ही है कि वहां के जो श्रीलंकन नेवी के जो सदस्य हैं, जो उनके आर्मी एयरफोर्स के, वो आकर के देखें कि वो किस तरह का INS उदयगिरी जो डॉक है उसमें क्या क्या आले लगे हैं, किस प्रकार से ब्रह्मोस की मिसाइलें लगी हुई है, क्या है ये, वो सीखे देखे, तो एक दूसरे को दोनों आर्म फोर्सेस के बीच में एक भरोसा बढ़ता है, और वो भरोसा बहुत जरूरी होना चाहिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, और किसी के बरकलाप नहीं, दोनों के फायदे के लिए, इट हैज टू बी अ विन विन सिचुएशन। तो यही कारण है कि हम देखते हैं कि अपने रक्षा मंत्री जब उधर गए और उनके राष्ट्रपति से भी मिले, उनके प्रधानमंत्री से भी मिले, और इस तरह की जो एग्रीमेंट साइन हुए, खासकर 3 डिफेंस MOU जो दस्तखत हुए, मुझे लगता है दोनों देशों के बीच में अपने संबंध और मजबूत होंगे।
0: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बेली ब्रिजेस के उद्घाटन और श्रीलंका सेना की रक्षा क्षमता के लिए एक AI लैब की स्थापना पर भी बात की।

0: रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर जहां पे वार्षिक तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है 1200 श्रीलंकन डिफेंस पर्सनल को, और जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी की जा रही हैं मित्रा शक्ति आर्मी के लिए और सिनेक्स नेवी के लिए, इसके बारे में बताइए सर।
1: ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेस होते हैं मित्र शक्ति हुआ बिटवीन श्रीलंकन आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में, ये सालाना होते हैं और श्रीलंका के साथ ही नहीं, ये काफी देशों के साथ करते हैं, रूस के साथ करते हैं, चीन के साथ करते हैं, अमेरिका के साथ करते हैं, बाकी सिंगापुर के साथ करते हैं, नेपाल के साथ करते हैं, बहुत देशों के साथ हम इस तरह का एक्सरसाइजेस करते हैं। मकसद एक कि दोनों देशों के बीच में, अभी हम देख रहे थे जापान के साथ हो रहे हैं, तो ये जो दोनों देशों के बीच में खासकर अपने और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, मित्र और शक्ति, और शक्ति में शांति बोलते हैं, तो यही कारण है कि मित्र शक्ति दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे के बीच में सोच विचार है वो एक जैसा हो, और जो नॉर्मल वर्किंग पैरामीटर्स हैं वो एक दूसरे को समझे, तो ये सब जो चीजें हैं भारत और श्रीलंका। अब क्या है, इस तरह के जब डिफेंस एमओयूज दस्तखत होते हैं तो इट बिकम्स ऑफिशियल, ये अभी कोई ये नहीं, हम लोग दोनों देशों ने दस्तखत किए हैं और हम दोनों देशों ने माना है, ये बहुत जरूरी है, ये जो सी लेन्स है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, हम दोनों मिल करके काम करेंगे, जिसके लिए भारत ने उन्हें डॉर्नियर मैरिटाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट दिया है, और वो मैरिटाइम डॉर्नियर मैरिटाइम रिकॉग्निशंस एयरक्राफ्ट जो भारत में बनता है वो हम नया एक देंगे, उससे पहले जो अपनी इन्वेंट्री में एयरक्राफ्ट था वो हमने उन्हें दिया, कहा कि 2-3 साल आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा, हमारे जो क्रू है उनके साथ काम करते रहिएगा, जैसे कि एक दूसरे के साथ जब मिल करके काम करेंगे और जब वो नया जहाज उनको मिलेगा तो वो उसका अच्छा तरीके से उपयोग में ला सकेंगे फॉर मैरिटाइम सर्वेलेंस। तो दिस कॉन्टेक्स्ट मिलिट्री ट्रेनिंग को लेकर के, इसलिए जॉइंट एक्सरसाइजेस को लेकर के, जैसे INS उदयगिरी वहां पे डॉक है उसको आकर के देखने के लिए, और जैसे इस बार जब वहां पे जबरदस्त तूफान आया तो हम लोगों ने किस तरीके से उनको बेली ब्रिजेस दिए, बेली ब्रिजेस का उद्घाटन अभी क्या रक्षा मंत्री ने उधर, तो ये किस प्रकार से जो वो भी मदद हम श्रीलंका की कर सकते हैं वो हम करेंगे, और इसका जरूर अब श्रीलंका को भी लगता है कि एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर भारत एक उभरता हुआ एक रिस्पॉन्सिबल देश है, इसके ऊपर सबका भरोसा है, और खासकर जो अब हमारे पड़ोसी हैं उनका भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोग इस तरह की एक्सरसाइजेस एक दूसरे के साथ मिलकर के हर साल करते हैं।
0: लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और बड़ी गहराई से आपने हमारे साथ बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: जय हिंद।
0: जय हिंद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत श्रीलंका रक्षा सहयोग से मजबूत होती क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन जी चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come

0: सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

ये गीत आपने सुना फिल्म दो आंखें बारह हाथ से लता दी की आवाज में। भाई कुछ गीतों में शिकायत होती है और कुछ में इंतजार, और कभी कभी प्यार में हार भी इतनी

प्यारी और मासूम लगती है कि क्या बताएं। हाँ, अगर आप चाहें तो हम एक गीत आपको सुनवा सकते हैं, गीत आदित्य की आवाज में, जो कुछ कुछ ऐसा ही है। लीजिए सुनिए।

0: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो, इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ एनवेलप्स हैं। आप सब यहाँ आओ और ये एनवेलप्स ले लो।
1: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
2: मेरे वाले में नेडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
3: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
0: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2020.

0: लोगे।
1: आज सांझ ढले में बस इतना ही। दुआ करती हूँ फिर किसी रोज सांझ ढले हम मिलें और संगीत यूं ही चलता रहे। आपसे कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान और यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल

0: आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह तैयार है और विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संचालित करना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के करीब 15,000 जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की 200 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सम्मेलन की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुगलक रोड क्षेत्र में लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी देते हुए प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल पुलिस कमिश्नर मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही आम जनता को कम से कम असुविधा पहुंचे, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं।
2: आप लोगों को जानकारी हर्ष होगा कि कम से कम 16 जो है हेड ऑफ द स्टेट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत व्यापक अरेंजमेंट किए हैं। इन अरेंजमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा अपने हरित क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों, चौराहों, गोल चक्करों और सार्वजनिक स्थलों पर लगभग 15,000 गमलेदार पौधे लगाए गए हैं। वहीं 17 प्रमुख गोल चक्करों पर भव्य सजावटी रोशनी और 11 प्रमुख होटल परिसरों में आकर्षक रोशनी लगाई गई है। 10 NDMC भवनों और स्थलों पर सजावटी प्रकाश व्यवस्था तथा 9 स्थानों पर आकर्षक पुष्प फव्वारे भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय, अमृत उद्यान और दिल्ली मेट्रो संग्रहालय रविवार तक बंद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
0: वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब अपनी राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचाने, राहत तथा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और जान माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें SDRF गठन करने का निर्णय लिया गया। इसमें अधिकतम 1100 जवान होंगे। यह बटालियन राज्य सरकार के अधीन कार्य करेगी और आपदा की स्थिति में घटना स्थल पर तेजी से पहुंचकर प्रभावी राहत तथा बचाव कार्य कर सकेगी। इसके गठन के साथ ही दिल्ली सरकार अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को भी विशेष प्रशिक्षण दिलाएगी। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में उपलब्ध स्थानीय मानव संसाधन, आवश्यक कौशल और बेहतर समन्वय के साथ राहत तथा बचाव कार्यों में योगदान देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में SDRF का गठन लंबे समय से अपेक्षित था और ऐसे में प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा की स्थिति में गंभीर क्षति की आशंका को देखते हुए पहले से मजबूत तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र जरूरी है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारियों के साथ मास्टर प्लान और पारगमन उन्मुख विकास नीति को लेकर बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि बैठक का उद्देश्य मेट्रो और रैपिड रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन के आसपास

0: के क्षेत्रों को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बेहतर संपर्क मिलेगा और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच सुविधाजनक होगी। बैठक में गैर मानक औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास, बाजारों और गोदामों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी चर्चा की गई। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आज मदन लाल खुराना चौक दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो @AIRNews हिंदी को फॉलो करें।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री पर रोक के लिए कड़े कानून होने के बावजूद इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री की स्वचालित निगरानी और उपयोगकर्ताओं की उम्र की पुष्टि की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। याचिका के अनुसार फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म 13 वर्ष की उम्र से खाते बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इनमें करोड़ीमल कॉलेज, सुखदेव कॉलेज, लॉ सेंटर 1 और 2 तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन तथा युवाओं की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एससीएल दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। श्री दास ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर श्री सूद ने श्री दास को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद व्यक्त की कि उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव का लाभ दिल्ली के विद्युत क्षेत्र को मिलेगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध मादक गोलियां की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलोग्राम 832 ग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद की। पुलिस ने आरोपी के पास से 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट, @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह सिंधु ने आज दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट के जरिए लोग टोक की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान की स्थिति और उसके भुगतान तथा यातायात अपडेट आसानी से देख सकेंगे। लोगों की मदद के लिए इसमें ट्रैफिक सारथी नाम का AI चैटबॉट भी शुरू किया गया है, जो तुरंत जानकारी और सहायता देगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये वेबसाइट सिर्फ सरकारी सेवाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने का भी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि तकनीक और नागरिकों को साथ लेकर चलने से दिल्ली को और सुरक्षित, स्मार्ट और बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह सिंधु ने आज टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि क्षय रोग से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए पात्र परिवारों में क्षय रोग से बचाव के इलाज का दायरा

55% और डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर 74% तक पहुंच गया है। साथ ही 980,000 से ज्यादा चेस्ट एक्सरे किए गए हैं और निक्षय मित्रों के जरिए 115,000 से अधिक फूड बास्केट बांटी गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बचाव के लिए इलाज को तय समय सीमा में हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन आकलन के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन में नवीनतम तकनीकों के उपयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से ऊपर नहीं है और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए उसका सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों और वन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह सकता, वैज्ञानिक अनुसंधान को सफल, टिकाऊ और व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए संचार प्रबंधन और कार्बन सिंक बनाने के देश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी नवाचार के साथ मजबूत संस्थागत क्षमता भी जरूरी है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वन विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें वन सीमाओं के डिजिटलीकरण, वन और वृक्ष आवरण के आकलन तथा कार्बन भंडार के अनुमान पर 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान तथा यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में अंतरिक्ष से जुड़ी गतिविधियों में अधिक संस्थाएं और देश शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज।

0: promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। श्रीमती मुर्मू ने आगे आगा खान विकास नेटवर्क के समाज सेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत की खबर है। सरकारी प्रसारक के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत के साथ मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। New Delhi is geared up to host the 18th BRICS Summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. Top leaders of the grouping, including Chinese President Xi Jinping and Russian President Vladimir Putin, will be attending the BRICS Summit. The visit is expected to be a high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. The Delhi police has made elaborate arrangements in view of the BRICS summit. Giving details about the security arrangements, Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agarwal said that arrangements have been planned to

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. With a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

मधुरिमा सुन रहे हैं आप। विभा के साथ बात चल रही है राग खमाज की। राग खमाज के भावों के अनंत सागर से अगला भाव है प्रेम का। कभी कभी प्रेम के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती, बस एक नजर ही काफी होती है और फिर वही नजर धीरे धीरे बन जाती है एक पूरी कहानी। आइए महसूस करें मानस पटल पर उतरती उस तस्वीर को जो संगीत ने उकेरी है, जिसमें खमाज के सुर, घुंघरुओं की छनक और ताल की गति है लता दी की आवाज में। फिल्म गाइड का गीत, संगीत एस टी बर्मन का।

11 से 13 सितंबर तक यात्रा से पहले ताज़ा ट्रैफिक एडवाइजरी के लिए @DTP Traffic देखें या 1095 पर संपर्क करें। संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में तुरंत 112 डायल करें। सुरक्षित यात्रा करें, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें।

प्रेम में मिलन की कल्पना जितनी खूबसूरत होती है उससे भी खूबसूरत होता है मिलन का वो क्षण। आइए सुनते हैं फिल्म अभिमान से किशोर कुमार और लता दी की आवाज में ये गीत।

आज की मधुरिमा में बस इतना ही। आज राग राग खमाज में हमने कई रंग देखे। फिर किसी रोज मिलूंगी आपसे लेकर नया राग नए रंग। नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं लेकल के खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नजर डाली जाए आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी। ईस्ट जोन ने साउथ जोन को हराकर 13 वर्षों बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता। विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में कल मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालेंका का सामना जैसिका पेगुला और कोको गॉफ का मुकाबला एलेना रायबकीना से होगा। तो कार्यक्रम को शुरू किया जाए आज क्रिकेट के मैदान की खबरों के साथ। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज दुबई में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर और 5 गेंद में 1 विकेट खोकर के 53 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। और इस मैच पर और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। भारत ने ग्रुप चरण के अपने 3 मुकाबलों में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान पर जीत दर्ज कर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। विशेष, शुरुआत में ऐसा लगा था कि स्मृति के जल्दी आउट होने के बाद टीम की पारी लड़खड़ा सकती है, लेकिन एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई।
1: बिल्कुल शक्ति, स्मृति मंधाना 9 रन के स्कोर पर, टीम का जब स्कोर 9 रन था तब आउट हुई, तो समर्थकों में काफी चिंता देखी जा सकती थी। लेकिन अब शेफाली वर्मा और प्रतिका रावल के बीच ये जो साझेदारी हो रही है, ये अब 44 रन की हो चुकी है 36 गेंदों पर, और शेफाली वर्मा 25 गेंदों पर 32 रन बनाकर खेल रही हैं, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। वहीं प्रतिका रावल 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए 1 छक्के और 1 चौके के साथ 18 गेंद पर 18 रन बनाकर खेल रही हैं। बांग्लादेश की तरफ से सुल्ताना खातून ने 1 विकेट लिया है। तो ये इस मुकाबले में भारतीय टीम की सधी हुई शुरुआत कही जा सकती है, जहां पहले काफी कम रन बने थे लेकिन अब 8 ओवर में 53 रन बना लिए हैं 6.62 के रन रेट से, जो कि एक काफी अच्छी शुरुआत कही जा सकती है।
0: जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत। लेकिन भारत के लिए इस पूरे टूर्नामेंट में जो चिंता का सबसे बड़ा सबब रहा वो है मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाजों का बड़े स्कोर ना करना। टीम कई खिलाड़ियों को देखा गया, कई बार हरमनप्रीत को वो शुरुआत मिली या फिर प्रतिका को थी शुरुआत मिली, लेकिन उसको एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट करना टीम के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हुआ। शुरुआत के खासकर दोनों मुकाबलों में थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ इसके इतर गेंदबाजी ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। दीप्ति शर्मा और ऋषि चरणी की बात अगर की जाए खास तौर पे, जिन्होंने अपने आंकड़ों से अपनी गेंदबाजी से साबित किया है, तो बांग्लादेश के सामने कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण मुकाबला यहाँ पे भारत को ज़रूर मिलेगा। तो भारतीय टीम किस मोर्चे के लिए कितनी तैयार नज़र आती है?
1: अगर भारतीय टीम के अभी तक सफ़र की बात करें शक्ति, तो भारतीय टीम के सभी प्रतिद्वंदियों को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है इस टूर्नामेंट में, वो भारतीय गेंदबाजी के दम पर, क्योंकि जिस डोमिनेटिंग अंदाज से भारतीय गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है, कोई भी टीम भारत के सामने टिक नहीं सकी है और 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। हालांकि आज बांग्लादेश के खिलाफ एक अच्छा मुकाबला देखने की उम्मीद है, क्योंकि एक बांग्लादेश ने भी अच्छा शुरुआत ली है 1 विकेट लेकर। और इसी के साथ अब भारतीय टीम अगर ये सेमीफाइनल मुकाबला जीतती है तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से फाइनल में भिड़ेगी।
0: जी बिल्कुल, और अगर हमने भारत की बात की तो दीप्ति शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक 4 मैचों में 8 विकेट, जबकि श्री चरणी 7 विकेट ले चुकी हैं। और इस पे सबसे खास है कि दीप्ति शर्मा का जो एवरेज है वो 1.25 का है, यानी 1.75, यानी कि बहुत किफ़ायती रही हैं, मात्र 14 रन दिए हैं। और वो पहले मैच का शानदार स्पेल जहाँ पर सिर्फ विकेट उनके खाते में थे और कोई रन नहीं दिया, और देखा जाए तो प्रेमा रावत ने भी अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है, नंदिनी शर्मा ने किया है, तो भारतीय गेंदबाजों से आज उम्मीद होगी कि वैसी ही लय बरकरार रखें और इस टूर्नामेंट में भारत के लिए फाइनल का रास्ता और क्लियर करें और भारत महज 2 कदम दूर है और 2 कदम की दूरी को टीम पाटने का काम करें। और अब महिला एशिया कप के बाद बात की जाए दलीप ट्रॉफी की। ईस्ट जोन की टीम ने 13 वर्षों बाद दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन को चेन्नई के एम ए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी की बढ़त के आधार पर विजेता घोषित किया गया।
2: ईशान किशन के शानदार दोहरे शतक की बदौलत पूर्वी क्षेत्र की टीम ने तीसरी बार दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। इससे पहले टीम ने वर्ष 2012-13 में आखिरी बार ये खिताब जीता था। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए पूर्वी क्षेत्र ने पहली पारी में 708 रन का स्कोर बनाया। कप्तान ईशान किशन ने 30 चौके और 7 छक्के की मदद से 270 रन की यादगार पारी खेली। वहीं कुमार कुशाग्र ने 101 और शिखर मोहन ने 85 और अभिमन्यु ईश्वरन ने 72 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में दक्षिण क्षेत्र की टीम कप्तान तिलक वर्मा की 99 रन की पारी के बावजूद 336 रन ही बना सकी। तिलक के अलावा देवदत्त पटिगल ने 62 और चामा मिलिंद ने 43 रन बनाए। गेंदबाजी में पूर्वी क्षेत्र की ओर से मुकेश कुमार ने 3, मोहम्मद शमी, कुरैशी और शिखर मोहन ने 2-2 विकेट लिए। पूर्वी क्षेत्र को पहली पारी के आधार पर 372 रन की बढ़त हासिल हुई। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र ने फॉलो ऑन देने की बजाय दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने दूसरी पारी में मैच ड्रॉ होने से पहले 7 विकेट खोकर 388 रन बनाए। ईशान किशन ने दूसरी पारी में भी 80 रन की पारी खेली। वहीं मोहम्मद कुरैशी 116 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में हासिल बढ़त के आधार पर पूर्वी क्षेत्र को विजेता घोषित किया गया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच और तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार दिया गया। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन जीत ईस्ट जोन के हाथों, और कह सकते हैं कि कप्तान ईशान किशन की वो शानदार पारी जो शायद ये टीम और ईशान किशन वर्षों वर्षों तक याद रखना चाहेंगे विशेष।

0: कुल शक्ति, ईस्ट जोन ने ये खिताब जो है 13 साल बाद जीता है। इससे पहले इस टीम ने 2012-13 में ट्रॉफी उठाई थी। और ईशान किशन जो जिस भी टीम की कप्तानी की कमान संभाल रहे हैं उसको फाइनल खिला देते हैं। झारखंड में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टीम को फाइनल खिलाया और पहली बार खिताब जिताया। उससे लेकर अब तक का सफर जो रहा है बहुत ही शानदार रहा है। और इस मुकाबले में जो बल्लेबाजी उन्होंने करी है बहुत ही ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करी है। पहले इनिंग में 270 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 80 रन बनाए, तो 350 रन उन्होंने अकेले ही बना दिए। और वहां साउथ जोन की जो पूरी टीम है वो सिर्फ 336 रन ही बना सकी। इस फाइनल की एक खास बात यह भी रही कि दोनों कप्तानों ने शानदार प्रदर्शन किया। शक्ति, क्योंकि ईशान किशन की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन तिलक वर्मा जिन्होंने पूरा टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल मुकाबले में भी 99 रन की पारी खेली, अपनी टीम की तरफ से वो अकेले योद्धा की ओर साबित हुए। जो ईशान किशन है उनका उनको एक मलाल जरूर रहेगा इस मुकाबले में कि वो 320 रन का जो रिकॉर्ड था रमन लांबा का उसको तोड़ने से थोड़ा चूक गए। और ये जो उन्होंने उपलब्धि हासिल करी है बतौर कप्तान, ये बेहद सराहनीय।
1: जी बिल्कुल, आपने ईशान किशन और तिलक वर्मा की बात की और तीन मुकाबले खेले, 5 इनिंग में 409 रन बनाए ईशान किशन ने और 2 मैचों की 3 इनिंग में 266 रन तिलक वर्मा के। तो ये दोनों खिलाड़ियों ने सफ़ेद जर्सी और लाल गेंद के सामने खुद की प्रतिभा को साबित किया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ईशान किशन बतौर विकेट कीपर बात होती है, बतौर बल्लेबाज बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने दावेदारी की है कि ईशान किशन बतौर कप्तान भी बात की जाए। क्रिकेट के मैदान के बाद अब रुख निशानेबाजी का। दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने आज 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा और मिली शाह की तिकड़ी वाली भारतीय टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि निशानेबाज मोना ने इसी स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में रजत और अवनी लेखरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं राजेश निंदागुड़ी, आनंद कृष्णा और स्वरूप उनारकर की भारतीय पुरुष टिकड़ी ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय टीम ने 1856.3 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। और इसी के साथ ही देखा जाए तो भारत ने आज एक और टिकट अपने लिए, पहला टिकट 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स के लिए कन्फर्म कर लिया है, जो कि मिला है अवनी मोना को। मोना ने पहली खिलाड़ी बन गई है 2028 लॉस एंजलिस पैरालंपिक्स का टिकट पाने वाली। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है।
2: गत विजेता भारत ने मैच की शुरुआत से ही पाकिस्तान की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारत ने मैच के 7वें मिनट में ही पहला गोल करते हुए अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। भारत को ये सफलता पूजा साहू ने दिलाई। इसके ठीक 2 मिनट बाद रोशनी एंड ने भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने अटैक जारी रखा और अगले 5 मिनट में भारत ने 3 और गोल दागे। तनुश्री दिनेश काडू ने 11वें, सुखवीर कौर ने 13वें और सानिका चंद्रकांत माने ने 13वें मिनट में गोल किया। धमाकेदार पहले हाफ के बाद दूसरे हाफ में भारत का अटैक और धारदार हो गया और भारत ने इस हाफ में 5 और गोल किए। भारत ने हाफ टाइम तक 10-0 की बड़ी बढ़त हासिल कर ली। दूसरे हाफ की शुरुआत के बाद 39वें मिनट में मधु सिदार ने 1 और गोल किया और 1 मिनट बाद सुप्रिया ने भी मैच का अपना पहला गोल दागा। इसके बाद पूजा मलिक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49वें और 51वें मिनट में लगातार 2 गोल किए और अपनी हैट्रिक पूरी की। कृष्णा शर्मा और बिनिमा धन ने भी गोल किए, जिससे टीम की बढ़त लगातार बढ़ती गई। सुप्रिया ने 54वें मिनट में अपना दूसरा गोल दागा, जबकि रोशनी ने मैच के आखिरी मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और भारत की 19-0 की शानदार जीत पर मुहर लगा दी। भारत ने जापान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया जैसी मजबूत टीमों को हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया था। अब भारतीय टीम सेमीफाइनल में कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से खेलेगी। मौजूदा चैंपियन भारत लगातार तीसरी बार जूनियर महिला एशिया कप का खिताब जीतने से सिर्फ 2 जीत दूर है। टीम ने 2023 और 2024 में भी ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: तो एक शानदार जीत, जहां जब भारतीय टीम उतरी तो एक के बाद एक गोल की बारिश पाकिस्तान टीम के ऊपर, और जब तक पाकिस्तान की टीम ये समझ पाती कि आक्रमण कितना जोरदार है, स्कोर बोर्ड पे स्कोर 19-0 था और भारत ने एक तरफा से भी एक तरफा ढंग से इस मुकाबले को जीता और ये

0: बताया कि क्यों इस प्रारूप में, इस वर्ग में भारत इतना सफल टीम है और क्यों भारत ने पिछले दो बार ये खिताब जीता है और महज दो कदम दूर भारतीय टीम अब अपने लगातार तीसरे खिताब से, खिताबों की हैट्रिक से। और अब अंत में कार्यक्रम में बात की जाए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट की, जिसके सिंगल्स सेमीफाइनल की तस्वीर एकदम स्पष्ट हो चुकी है। महिला सिंगल्स सेमीफाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे, जहां पे आर्यना सबालेंका होंगी, जैसिका पेगुला होंगी, कोको गॉफ होंगी और राबाकीना, ये चारों खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और विशेष कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, खिताब से दूरी बहुत कम है, एक एक दो दो मुकाबलों की। किस किस खिलाड़ी ने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है और क्या तस्वीर है?
1: शक्ति, अगर महिला सिंगल्स की बात करें तो सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की छठी वरीयता प्राप्त लिंडा नोस्कोवा को हराया था और पेगुला ने हम वतन खिलाड़ी एम्मा नवारो को मात दी थी। वहीं कोको गॉफ ने रूस की पांचवी वरीयता प्राप्त मीरा एंड्रीवा को हराया और रायबरकीना ने चीन की झेंग किन वेन को बाहर का रास्ता दिखाया था। तो महिला सिंगल्स में काफी कड़े मुकाबले हमको देखने को मिले। और अगर सेमीफाइनल्स की बात करें तो आर्यना सबालेंका का मुकाबला जो है जेसिका पेगुला से होगा, वहीं कोको गॉफ का मुकाबला एलिना रायबकीना से खेला जाएगा। इन दोनों मुकाबलों का विजेता का फाइनल मुकाबला जो होगा वो 13 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो फ्रांसिस तियाफो ने अपने ही देश के एलेक्स मिचेलसन को हराया था। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेन शेल्टन ने बड़ा उलटफेर करते हुए कार्लोस अल्कराज को मात दी थी। अलेक्जेंडर ज्वेरेव और कैरोन कचनोफ ने भी अलग अलग मुकाबलों में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। और अब जो है मेन्स सिंगल्स में भी काफ़ी कड़े मुकाबले हमको देखने को मिलेंगे, जहाँ फ्रेंच ओपन 2026 के विनर अलेक्जेंडर ज्वेरेव कैरेन कचनोफ के सामने खेलेंगे और फ्रांसिस तियाफो जो है वो बेन शेल्टन से मुकाबला करेंगे, जिन्होंने हाल ही में कनाडा ओपन का टूर्नामेंट जीता था। तो काफी कड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे और पुरुष सिंगल्स का भी फाइनल जो है वो 13 सितंबर को ही खेला जाएगा।
0: जी बिल्कुल, तो 13 सितंबर को फाइनल होगा कि कौन खिताब को उठाता है, वर्ष का ये चौथा ग्रैंड स्लैम। और आपने बेन शेल्टन की बात की, सबसे अधिक मेरे को लगता है नजरें उन पर रहने वाली हैं क्योंकि वो जीत जो क्वार्टर फाइनल में आई है डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज के ऊपर 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 से शायद उनको फेवरेट्स बना देगी। और अंत में चलते चलते एक बार विशेष स्कोर बोर्ड पे वापस नजर डाल दी जाए, भारत और बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल मुकाबला जारी है, क्या स्थिति है इस समय?
1: अगर भारत और बांग्लादेश के मुकाबले की बात करें शक्ति, तो 10 ओवर का खेल हो चुका है जहां भारत ने 59 रन बना लिए हैं और 2 विकेट गंवा चुकी है। स्मृति मंधाना पहले ही आउट हो गई थी, अब प्रतिका रावल भी पवेलियन लौट चुकी हैं 24 गेंदों पर 20 रन बनाकर और ये विकेट रबाइन खान ने लिया है।
0: जी बिल्कुल, और लोगों को बता दें कि शेफाली वर्मा अभी भी क्रीज पर डटी हुई है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़

0: रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुम्बकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
1: India's approach is rooted in वसुधैव कुटुम्बकम, that is one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar south pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है।

0: शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
2: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.ai.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul, including a gold. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family.

0: कंट्री वाइड ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICARIARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: आज हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी। RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: बाना जी। सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश के हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित। और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है। और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है। अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र। तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का, गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है, तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी।
2: और जो पशुधन है, हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है, तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहां के लोगों को जाना पड़ता है, तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है। इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं, मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है, और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है। और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं, आती है तो बहुत कम आती है, कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है।
1: तो वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
2: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मुख्यतः जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है, और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है,
1: और मोटा अनाज,
2: जी मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं, और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85-90% के आसपास दलहन भी बारहनी क्षेत्रों में होती है, और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है। तो ये इस प्रकार की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र है जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है,
2: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है, और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं, और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है, हमारा खाद्यान्न उत्पादन इस तरह हम बना के रखते हैं, क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घकाल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती है, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती है?
2: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फेल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा ये है कि यदि एक फसल फेल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है। यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहां पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
1: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
2: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10, 11, 12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण है, किसान है जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश हैं, जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रीडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उनपे मंथन करेंगे और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में, तो उस पे मंथन होगा, क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे और जो ये फसल प्रणालियां हैं बारानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
1: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
2: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा। और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की, साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी। और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
1: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
2: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है। कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती। बीजीय मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर एफपीओ का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। और जो बरानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बरानी क्षेत्रों के, उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो और ICRISAT हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
2: ICRISAT जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद हैं, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद हैं जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। उनकी सिर्फ समस्याएं सुनी नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयासरत है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, और ICAR का और जो ICRISAT का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके, उस पे बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
2: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नो टिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है उसका नुकसान होता है उन सबको बचा जाए। तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्ते तकनीकियां हैं उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में एक नंबर पर पहुंच चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हों उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो पुराने प्लेटफॉर्म भी थे उन सब का उपयोग करते हुए हम किसानों से सीधा जुड़े हुए हैं।
1: डॉक्टर बर्ना, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
0: अभी आप सुन रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: building resilience, building innovation, and building cooperation and for sustainability. So to be sustainable, now that is the main thing with the women's organizations, that they have to be sustainable. And that means they have to be, it's not that for one season you work and then you get just fold up and no, that will be very counterproductive because it will make women even more diffident and not confident of themselves in carrying out their work. So, but for sustainability, you need to look at the issue of finance. You need to look at the issue of off-season activities. You need to look at the issue of all around working conditions. And then also the difference between the rural areas and the urban areas. I must tell you that for countries of South Asia, we're one of the unique areas in the world where still about 65% of the population is living in rural areas. So we have to prepare for looking after the women's working conditions and women-led development in the rural areas as a very distinct and big group. And unless you overcome the problems of empowerment and women-led development in rural areas, you won't get a good result for the whole country because 65% are in the rural areas. So this is something that the Women's Business Alliance has been looking at. It was mentioned also in a little bit in Commerce Minister's speech, but I think that for further development of the alliances, these rural-to-rural contacts between the BRICS members and institutions built in rural areas, working with rural areas in other countries, would be very valuable. So I really hope that when they write the report of this excellent conference held yesterday of the BRICS Women Business Alliance, they will focus on these aspects, which will help in carrying it forward.
1: Ambassador Sikri, thank you so much for your time and also giving us such deep insights on the BRICS WBA Women-Led Development Conference. Thank you so much for joining us for the program tonight.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on unlocking new opportunities for women in BRICS economy. The participants were Veena Sikri, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Insights.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव की बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ की बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव की बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
4: भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे दो दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कल से 11 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान आम जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बो

0: प्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलीखनोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत न होने देना। भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने तीन नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक जीता। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिलीशा की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग S1 स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक चौथे ओवर में बिना कोई विकेट खोए 20 रन बना लिए थे। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 149 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's 11 major emerging and developing economies. India is the current chair of the influential grouping. Several world leaders will participate in the summit, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Saudi Arabia's Foreign Affairs Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping are expected to arrive tomorrow. The BRICS summit will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Home Minister Amit Shah today said that the Narendra Modi-led government has completely transformed the country's disaster management system and set the goal of zero casualty. Mr. Shah was speaking while chairing the third meeting of the governing body of the National Institute of Disaster Management in New Delhi. Mr. Shah said the government is focusing on three pillars, which are risk reduction, early warning systems and zero casualty. India and Russia today held talks on joint production of civil passenger planes and potential deliveries and arrangements for 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu held discussions with Russia's Industry and Trade Minister Anton Elikhanov in New Delhi on joint manufacturing of civil passenger aircraft to meet the country's demand for regional air connectivity. The government has amended the Consumer Protection E-Commerce Rules 2020 to tighten norms on price transparency, sponsored listings, search result manipulation and dark patterns. Under the amended rules, e-commerce entities will have to disclose the reduced price and prior price whenever a price cut is announced. India made a strong start at the World Para Shooting Championship, bagging four medals, including one gold, two silver and one bronze on the opening day of the event in Changwon in South Korea today. The Indian women's team of Mona Agarwal, Avni Lekhra and Millie Shah clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. In hockey, the Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi today. And that is the end of this news bulletin.
3: Namaskar. Akashwani se Vishw Darpan ke saath main Mohammad Zubair. मुख्य समाचार. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है. पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया. भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना. भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया. यमन के लाल सागर तट के पास हूती विद्रोहियों की मौजूदगी के कारण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में खतरा बढ़ा. और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. और अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है. श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए. प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं. ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
3: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की जरूरत है.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
3: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना. उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है. उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ पूरी मानवता तक पहुंचने चाहिए.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity.
3: प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उत्कृष्ट और कम लागत वाले अभियानों के कारण इसरो ने दुनिया भर में सम्मान हासिल किया है. उन्होंने कहा कि इसरो की क्षमताओं का लाभ किसानों और मछुआरों को मिल रहा है. भारत इस शनिवार से नई दिल्ली में भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है. 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील चीन मिस्र इथियोपिया इंडोनेशिया भारत ईरान रूस सऊदी अरब दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी. बेलारूस बोलीविया क्यूबा कजाकिस्तान मलेशिया नाइजीरिया थाईलैंड युगांडा उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में भाग लेंगे. शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद अल जायद अल नहयान शामिल होंगे. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी. प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं. रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे. इसके बाद मजबूती नवाचार सहयोग और सतत विकास समावेशी वैश्विक विकास के लिए भविष्य का निर्माण विषय पर सत्र होगा. हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं.
4: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है. शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं. विदेश मंत्रालय गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है. वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं. दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं. दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं.
5: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
4: भारत की अध्यक्षता चार प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद

0: अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बो प्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच यमन की स्थिति गंभीर होती जा रही है। खबरों के अनुसार हूती लड़ाकों ने यमन के रणनीतिक बंदरगाह शहर मोचा पर कब्जा कर लिया है और वे बाब अल मंदेब जल डबरों मध्य के करीब पहुंच रहे हैं। यह घटनाक्रम हूती और यमन के सरकारी बलों के बीच फिर से शुरू हुई लड़ाई के दौरान सामने आया है। इससे वैश्विक समुद्री परिवहन और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 150 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में बांग्लादेश ने ताजा समाचार मिलने तक 8वें ओवर में 2 विकेट पर 35 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। यमन में लाल सागर तट के पास हूती विद्रोहियों की मौजूदगी के कारण बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य में खतरा बढ़ा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम रेणुका विद द वर्ल्ड न्यूज। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Houthis advance near Yemen's Red Sea coast, threatening Bab al-Mandeb Strait. And in Women's Junior Asia Cup hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
3: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey. Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
3: ISRO, which stands at the heart of this journey, has earned global admiration for its excellence and cost-effective mission. Its capabilities serve farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management and navigation. More than 430 satellites from 34 countries have traveled to space aboard Indian rockets.

रात धीरे धीरे अपनी चादर फैला रही है। दिन भर की भाग दौड़ अब थोड़ी सी थम सी गई है और शायद यही वो वक्त है जब हम कुछ पल अपने लिए निकाल सकते हैं। मैं हूं आज आपका साथी शमीम और आज की इस खूबसूरत रात में हम साथ हैं कुछ अच्छे गीतों के साथ और उन छोटी छोटी उम्मीदों के साथ जो अक्सर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं छुप कर रह जाती हैं। तो जहां भी हैं थोड़ा आराम से बैठिए, दिन भर की चिंताओं को कुछ देर के लिए दरकिनार कर दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हालात हमेशा हमारे हाथ में नहीं होते, लेकिन उनका सामना किस तरीके से करना है ये अक्सर हमारे हाथ में ही होता है। कभी रास्ता आसान होता है तो कभी थोड़ा सा मुश्किल, कभी लोग साथ चलते हैं, कभी कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। लेकिन अकेले चलना हमेशा अकेला नहीं होता, कभी हमारी उम्मीद हमारे साथ होती है, कभी कोई याद और कभी कोई प्यारा सा गीत, ठीक इस गीत की तरह।

दोस्तों, कई बार एक छोटी सी उम्मीद, एक अच्छा गीत और एक सच्ची मुस्कान और किसी अपने की आवाज हमारे पूरे दिन का अर्थ बदल देती है। तो जहां भी हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों को थोड़ा सा समय दीजिए, आपकी रात सुकून भरी हो, इसी उम्मीद के साथ मैं छोड़ जाता हूं आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी।

0: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन तीन विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia, Abiy Ahmed Ali, will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज राइज मार्जिनली, सेंसेक्स एड्स ओवर 100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,450। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सेज फिनटेक कंपनी शुड ट्रीट कस्टमर डेटा एज अ फिड्यूशियरी रिस्पांसिबिलिटी रादर देन एज अ बिजनेस एसेट। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज अराउंड 4%, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स अबव $100 अ बैरल।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी, निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया। इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से ऊपर कर बढ़त की स्थिति में देखे गए।
0: Benchmark domestic equity indices ended 0.2% higher today, snapping a 3-day losing streak. Sensex gained 138 points to close at 74,903. Nifty added 46 points to settle at 23,000.

0: 3,478. However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावरग्रिड 2.3%, एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 2.4%, टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंट में 1.1% की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,502 companies declined, 1,826 companies advanced and 199 companies remain unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रुपए पर बंद हुआ। पुनित, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत स्वागत है। आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई। क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उस पर डालेंगी?
2: तो निखिल, हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि मरहम का अगर काम करे आज का बाजार की थोड़ी जो मामूली बढ़त थी, पर ऐसा नहीं है। बाजार आज काफी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे का दौर रहा बाजार में, और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाजार ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी, यानी ज्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में वो वीक है, कमजोर है। अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं दोबारा से उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है। और उसका मुख्य कारण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, खासतौर से मैं कहूंगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो काफी बढ़ रही हैं। और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे, और उसकी वजह से जो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़त है, तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स इस वक्त बाजार पर दबाव डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में वीक ही रहेगा।
1: लेकिन इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई उसके लिए आप क्या कहेंगे?
2: देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़त थी और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लार्ज कैप्स को। इनफैक्ट हेडलाइन नंबर्स जब भी हम देखते थे, जो निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स देखते थे, तो वहां पर हम देखते थे कि गिरावट होती थी, लेकिन तब भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग होती थी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें, आप आगे आंकड़े देखेंगे तो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुझान उनका है। तो पर मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके अंदर, क्योंकि काफी शेयर्स में हम देख रहे थे काफी गेन्स आ रहे थे। तो नेचुरली जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अगर वीकनेस का है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और मिड कैप में आज वही था।
0: वी आर सीइंग दैट डीआईआईज हैव कंटिन्यूड टू सपोर्ट द मार्केट। देयर इज आल्सो द स्टोरी ऑन द एम्फी डेटा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, वेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट बाय 19%. So we see institutional investors play a very important role in supporting the market right now. But the biggest concern is this overall sentiment basically on inflation, especially imported inflation, what's going on in the Strait of Hormuz. How do you see the market changing? Because Jefferies is saying that, you know, India is just waiting for the opportunity really to break out of this. How will you explain what's happening in the market in the short term?
2: So, Arjun, in fact, there are two, I would say, counter trends underlying in the market. One, of course, is a macro trend, which is the global factors, political factors, economic factors, inflation that you are importing via high crude oil prices, higher interest rates. So that is one trend which is overlying in terms of market trends. The other thing is, of course, the internals of the Indian economy. So we see that while all these pressures were there, the Indian economy has continued to do very well. we've grown at a robust 7.8% rate in the in second quarter GDP numbers. We also have seen that investors

0: domestic investors, they continue to be positive and bullish about the markets. And you mentioned that DIIs have seen inflows of funds, and that is the reason that we find that the domestic investors, investment institutions, they have been doing, they have been supporting the market because they have fund flows from investors. My guess is that when the macro situation, the international situation, it stabilizes, we will see Indian markets outperform.
1: FIIs returning to the market, is that possible in the short to medium term, especially with the bond yields in the US? Because hedge funds will look at where the returns are maximum, especially in their own currency. They don't have to go through the process of buying rupees to invest in our market and then once again buy dollars really to convert it and then reinvest it back into the markets. Where do you see the FIIs, FPIs returning really?
0: So, traditionally, if US interest rates start going up like they're happening right now, if you look at the 10-year bond yield in USA, it is about 4.85%. Usually, if that happens, then FIIs would pull money out of emerging markets and take that money back to America because they would like to invest in American
1: arbitrage.
0: The interest rates are there. However, if you look at what has happened in India vis-a-vis the FCNRB deposits, then you will realize that foreigners still have a lot of faith in the Indian economy. We have seen approximately $125-127 billion flow into Indian economy via the FCNRB route. So I think that while FIIs may be tempted to take out money in the short term, in the longer term they want to put money in India because that is where the growth opportunities are. So my guess is that, again, I circle back to the same point. The moment we find that macro, global macro situation improves or it stabilizes, I think we will see FIIs come back to India, which may be hopefully not towards the end of this year.
1: So we're talking about interest rates being offered by FCNR deposits versus what the treasuries in the US offer to investors there on government debt itself. But there is clearly a difference on which paper inspires more confidence for hedge funds.
0: So, see, we cannot compare FCNRB flows with 10-year bond yields because FCNRB facility was available only to NRIs. It wasn't available to, let's say, foreign investors or foreign institutions. Whereas any investor in the world can go to US markets, invest in government bonds and get that kind of a yield. So, however, I'm looking at those numbers only as a pointer to the confidence in Indian economy vis-a-vis the foreign investors. So, clearly, I think while the interest rates we offered on FCNRB deposits were much higher, in the range of about 6.5%, I think the broader message was that foreign investors will put in money into India if they have the opportunities. And for that, they need the global situation to stabilize.
2: Puneet, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा IT sector की ओर ले जाना चाहूँगा कि इस के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए IT sector के प्रति, और खासतौर पे ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप की स्थिति अलग है, मिड कैप और स्मॉल कैप की स्थिति अलग है, तो कैसे एक रिलेशन बना सकते हैं तीनों में?
0: निखिल, देखिए, IT sector के की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है in terms of exports, in terms of corporate earnings, in terms of जो भारत का जो एक साख है पूरी वर्ल्ड में, वो आईटी सेक्टर से बनी है. पिछले दिनों हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा वहां पर हमने कुछ कमी देखी है वहां पर कॉन्फिडेंस में, और हम देख रहे हैं कंपनियों के शेयर्स में भी गिरावट आई है, कुछ हद तक रिवेन्यूज में भी थोड़ा चैलेंज रहा है. तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, थोड़ा सा मॉडरेशन का फेज है आईटी सेक्टर में. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए आईटी सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के आईटी सेक्टर में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन आईटी.
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 24,697 करोड़ रुपए था. वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया और अगस्त में यह बढ़कर 32,200

0: रुपए की निकासी हुई है। कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, एसआईपी और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है। पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देख रहे एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है।
1: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी थी, तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में। कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज, जो एयूएम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए की एयूएम है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए। और जो इसमें भी जो खास बात है, आपने जो बात बताई कि 32,000 करोड़ रुपया एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जो हर महीने निवेशक एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड स्तर पर है। वो तो ये मुझे एक बहुत पॉजिटिव एक खबर लगती है इसमें, और आई होप कि दिस कंटिन्यूज, यही हमारा स्ट्रेंथ रही।
0: इसमें एक चीज ये भी आई है सामने निकल करके कि इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड जो है वो निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड आते हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं?
1: बहुत एक अलग चीज है क्योंकि लॉन्ग टर्म जो कन्वेंशनल विजडम है वो ये है कि ज्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में जाता है या इंडेक्स फंड में जाता है, और स्मॉल कैप्स और मिड कैप जो कि ज्यादा खतरनाक है, जो ज्यादा खतरा जिसमें रहता है उसमें ज्यादा रिस्की है, वहां पर कम निवेश होता है। पर जैसा हमने अभी आप और हम बात कर रहे थे पहले कि जो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स हैं वहां पर निवेशकों ने ज्यादा पैसा डाला है पिछले दिनों, वहां पर ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगता है, तो वो एक ट्रेंड देख रहे हैं। पर ये देखिए, लॉन्ग टर्म ऐसा रहता नहीं है, लॉन्ग टर्म में तो लार्ज कैप्स और जो फ्लेक्सी कैप्स जो फंड्स हैं वो ज्यादा नेचुरली अट्रैक्ट।
0: इसमें एक और दिलचस्प बात सामने आई कि गोल्ड ETF में भी निवेश बढ़ा है, 66.6% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।
1: देखिए, गोल्ड की चमक तो बनी हुई है भारतीय निवेशकों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है।
2: वेल, गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली एज अराउंड $4,400 पर ट्रॉय आउंस व्हेन इट हैड टच्ड 4000, येट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ इंटरेस्ट इन ETF रिगार्डिंग गोल्ड, बट डेट फंड्स there is an outflow in it, an inflow in ETF gold. Why is that the case? Because there is so much money now also going into treasuries, for instance, we mentioned about that earlier. Why is it that debt funds are seeing an outflow?
1: So debt funds usually see a very volatile flow because depending on the money, because mostly debt funds come from corporates. So whenever they have surplus cash lying in the banks, for short term they put money into debt funds. Of course, in the month of September we have advanced tax payments made out. So I believe that a lot of liquidity would have gone to advanced tax payments and therefore the flows in debt funds were lower.
2: In more news, RBI Governor Sanjay Malhotra said that fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. The RBI Governor stressed that fintech companies must act as partners in responsible financial innovation and handle customer data responsibly. He emphasized that technology has made banking faster, cheaper and more secure, and noted that India is now the world's third largest fintech ecosystem. SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey stressed that technological innovation should not compromise investor protection, market integrity and financial stability.
3: Our security markets has grown rapidly and technology has been central to that growth. Digital onboarding, electronic payments, robust clearing and settlement and the ability to trace transactions to the ultimate investor have made participation wider and more secure. But as markets become larger, faster and more interconnected, regulatory risk also changes. A vulnerability in one part of the ecosystem can travel much faster. This calls for resilient infrastructure and a regulatory approach that can identify such risks.
2: So when you talk about fintech companies, NBFCs, banking sector, today for instance, BankEx actually went up. Their business is booming really because capital and finance is a very important requirement in people's everyday lives, including the operations of companies. Fiduciary responsibility regarding customer data. How do you see privacy playing a important role here versus

0: Because India has a very difficult relationship with China. While we have a very large trade with them, our economies are interdependent in many ways, and yet we have a difficult situation with them on borders. There's a lack of trust between the countries. We've had very long-standing dispute, border dispute with between the two countries. So it's a very difficult relationship which operates at many layers. Hopefully, our leaders are able to resolve these differences for betterment of communities on both sides of the border. And India, China, Russia, I think there's, and Brazil particularly lately, I think these four countries really comprise a very significant part of global economy, and therefore the BRICS summit, I think, at this point of time being held in India and all the top leaders attending that summit, I think that is very, very significant, and hopefully something better will come out of this.
1: और एशियाई यूरोप बाजारों पर नजर डालते हैं। एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज 34% की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 225.02% की बढ़त के साथ बंद हुआ। अपनी थोड़ा सा बढ़कर के दायरे में अगर देखें तो बैंक ऑफ जापान की नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होनी है 17 और 18 सितंबर को, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी। क्या होगा अगर रेट बढ़ाए जाते हैं उनकी तरफ से? और दूसरी चीज जो अब हम देख रहे हैं, पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट में महंगाई का दबाव आपको महसूस हो रहा है या ब्याज दरों का कोई दबाव महसूस हो रहा है जिसका असर मार्केट पे पड़ेगा?
0: बिल्कुल निखिल, अगर आप देखिए बैंक ऑफ जापान की आपने बात करी, तो जापान में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है, बिकॉज से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड हमें मालूम चलता है, वो अब 3% के आसपास, करीब 3% 10-year बॉन्ड यील्ड जापान में हो गई है। ये 0.25 से ऊपर बहुत दशकों तक, कई डिकेड तक ये ऊपर नहीं गई, और अब अचानक अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी ये काफी दबाव पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़े जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा। कारण यह है कि जापान से काफी बड़ा करेंसी ट्रेड होता है, जापान से करेंसी मिलती है लोगों को, देशों को, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज डिस्टर्ब होंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज में रुकावट आएगी, अमेरिका में भी इसका असर पड़ेगा और भारत पे भी असर पड़ेगा। सो वी शुड रियली वॉच बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स वेरी केयरफुली।
2: एंड इवन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक व्हिच हैज रेज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 2.5%, बैंक ऑफ जापान इज एट 1%, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, एनर्जी constituting 14.3% rise as far as Europe is concerned.
0: Absolutely, Arjun. I think the elephant in the room really is the inflation, and inflation which has been caused by high energy prices. So central banks have limited choices. Let's see what they do.
2: In more news, global investment bank Jefferies has said that India's new industrial revolution is being driven by a large domestic market, rising private sector participation and sustained policy support. In a report published yesterday, it pointed to measures such as opening space to private players, tax holidays for data centers, incentive schemes for semiconductors, electronics and solar localization measures, and government GPU purchases as key enablers of growth across emerging sectors.
1: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य, समाचार तैयार किए जाने तक, 0.1% गिरकर 1,53,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति हम देख रहे हैं कि ETF में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं? अब
0: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहां से, तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है। तो मैं अपने जो नजर है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा, आने वाला सप्ताह उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और एनी मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड। तो गोल्ड एक नाजुक मोड़ पर अभी खड़ा हुआ है।
1: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
1: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
2: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of global GDP. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan will participate in the summit. Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will also participate. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira. Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, will also participate in the summit. The presidents of Russia and Brazil are set to arrive in the national capital later last night to participate in the summit. The president of South Africa is set to arrive today morning. President of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi, Prime Ministers of Malaysia and Ethiopia are scheduled to land in New Delhi today. The BRICS Summit 2026 will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. In view of the upcoming BRICS summit, Delhi Traffic Police yesterday informed that traffic diversions and regulated movement will be in place across

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम है निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बारह बजकर 11 मिनट और 31 सेकेंड जी हाँ हो चुके हैं। शहर की रफ्तार धीरे पड़ने लगी है, लेकिन शायद ऐसे में कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अभी भी जाग रहे हैं, किसी की याद के साथ, किसी के ख्यालों के साथ, या शायद किसी अपनों के इंतजार में। लेकिन इस बीच मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ निशिगंधा, रात के इन खामोश पलों में आपका साथी, कुछ मीठी यादों के साथ, कुछ अनकही बातों के नाम और कुछ गीत संगीत एहसास के नाम। हम आज आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं। कुछ ख्याल ऐसे होते हैं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें रोशनी में कह पाना शायद मुश्किल होता है। तो चलिए दिल को थोड़ा सा सुकून देते हैं और सुनवाते हैं आपको ऐसे ही गीत, ऐसे नगमे जिन्हें सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं किस्मत फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज में।

किसी की खूबसूरती की तारीफ करना आसान है, लेकिन जब कोई दिल को इतना अच्छा लगने लगे कि शब्द ही कम पड़ जाएं, तब बात कुछ और होती है। तो चलिए रात की इस खामोशी में उसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सारा दिन गुजर जाने के बाद जब ये रात का खामोश पहर आता है, जहां शोर कम होता है, एहसास ज्यादा सुनाई देते हैं, ऐसे में कोई पुराना गीत यादों को फिर से जगा देता है, दिल को एक मीठे सुकून के साथ भर देता है।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात की खामोशी में कुछ यादें और करीब लगने लगती हैं। कोई चेहरा, कोई मुलाकात, उससे जुड़ी कहानी याद आने लगती है।

मोहब्बत जब दिल पर दस्तक देती है तो इंसान थोड़ा दीवाना थोड़ा मस्ताना हो ही जाता है। किसी की मुस्कान, किसी की बातें, किसी की एक झलक दिल की दुनिया बदलने के लिए काफी होती हैं।

कभी कभी प्यार में रूठना भी अच्छा लगता है और मनाना भी। और जब सामने वाला प्यार से कहे कि अच्छा जी अब मान भी जाइए, तो भला ये दिल कितनी देर तक नाराज रह सकता है।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। शैफ अली वर्मा ने 40

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात का ये खूबसूरत पहर, साथ में कुछ ऐसे गीत जो दिल को छू जाए और पुरानी यादों को जगा दें। तो दोस्त एक बार फिर हम स्वागत करते हैं आपका। कार्यक्रम है गीत सुहाने। अगले कुछ पलों तक संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में इस याद और खूबसूरत एहसासों के नाम हम और आप साथ रहेंगे, सुनेंगे गीत, मैं सुनवाऊंगी आपको। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं गीत सुहाने का आगाज। हम और आप मिलकर सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत।

मोहब्बत में थोड़ा नटखटपन हो, थोड़ी शरारत हो और आंखों में काजल का जादू, तो बात ही कुछ और होती है। रात के इस खूबसूरत माहौल में याद आ गया ना वो सदाबहार अंदाज जिसमें प्यार भी है और मीठी छेड़छाड़ भी। तो चलिए सुनते हैं एक बेहद प्यारा सा नगमा, फिल्म है किस्मत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। और चलिए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म है कश्मीर की गली, रफी साहब की आवाज में।

कुछ गीतों में आज भी वो मासूम सी नटखट अदाएं, पुराने जमाने का वो एक जज्बा नजर आता है और आज भी वो गीत कहीं ना कहीं ताजगी भरे महसूस होते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है संघर्ष।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मैं

कभी कभी किसी का इंतजार भी कितना प्यारा होता है। शिकायत बस इतनी होती है कि उन्होंने बुलाया नहीं और दिल फिर भी उन्हीं की राह देखता रहता है। इसी नटखट शिकायत और प्यार भरे अंदाज के साथ चलिए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिसमें शरारत भी होती है और मोहब्बत भी, बस एक नजर पड़े और दिल की धड़कनें तेज हो जाएं।

इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब और निवेश को $50 अरब तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खानोफ के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच 4थे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात सुरमई है, हवाओं में खामोशी, और दिल ऐसे में किसी खास को याद कर रहा है। और ऐसे में जब कोई मीठी सी धुन कानों से निकलकर दिल तक पहुंचती है, तो दिल बस यही पूछता है कि आखिर ये एहसास क्या है, क्या वाकई में यही प्यार है।

रात की खामोशी में जब किसी की यादें आंखों के सामने ठहर जाएं, तो फिर सजने सवरने की क्या जरूरत, मोहब्बत की एक नजर ही काफी है। तो चलिए रात सुरमई में आप और हम सुनते हैं ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए शब्द नहीं बस एक अपना इंसान चाहिए। दिल में छुपी बातें जब होठों तक आ जाएं तो एहसास और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है।

मोहब्बत में सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाता, बल्कि किसी की मुस्कुराहट, उसकी बातें और उसके साथ होने का एहसास भी दिल को अपना बना लेता है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मोहब्बत में इससे खूबसूरत इकरार और क्या होगा, दिल भी आपका, धड़कन भी आपकी, और ये रात भी आपके ही नाम।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रात ये खामोशी और तुमसे ये दूरी, दिल चाहता है कि तुम बस सामने होते और ये रात थोड़ी और हसीन हो जाती।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग अल्पकालिक लाभ

0: के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमहुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच 4th द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कांगो के पूर्वी हिस्से के बुकाबू शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम से कम 26 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं मिलते ही रहेंगे हम।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब अक्सर जिंदगी नहीं बचती। 3:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

तो चलता ही रहेगा बेचैनियों में पड़कर, इतना बेचैन ना होइए, खुशियों को दिल खोलकर अपने दिल में संजोइए। तीन बजकर 26 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:33 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं अंदर से भी अच्छा हो। घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं कि अंदर से भी अच्छा हो। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। सुंदरता का क्या है, सुंदरता तो मेकअप से भी आ जाती है। 3:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

दोस्त सारे खत्म हो गए जब से इस मोबाइल से हमने दोस्ती कर ली। ऑनलाइन ही इतने दोस्त हो गए हैं, कि ऑफलाइन दोस्ती अब हमने खत्म ही कर ली। पड़ी जब जरूरत सच्चे दोस्त की, तब कोई न था साथ। रखा मोबाइल, निकले पुराने दोस्तों की तलाश में, तब पता चला अब तो उन सब ने भी इसी मोबाइल से ही दोस्ती कर ली। दोस्त अब सबके ही खत्म हो गए, क्योंकि सभी ने इस मोबाइल से ही दोस्ती कर ली। 3:47 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

3:53 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में कल शनिवार से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल

0: दाऊद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग कई अन्य द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर निर्भर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। नई दिल्ली में कल इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में एशियन गेम्स के लिए चुने गए कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी ने 9:22.49 के समय के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of the country's space journey.
2: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल. आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन. लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

आज उनसे पहली मुलाकात होगी। किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। छोड़िए बेचैनियां सारी, छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, मेरी इन बातों को भी थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं। वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं। फर्क तो सब हमारी सोच का ही है। इसी बरसात में किसी को हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और किसी को हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कीचड़। 4:29 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, कोई काम हो गया तो मैंने कर दिया, और जो नहीं हुआ तो जैसी भगवान की मर्जी, यही है बताता।

अनगिनत प्रयासों के इस दौर में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। हो जाएं जल्दी सफल, इस बात की फिक्र है हर पल होती। होंगे सफल या नहीं, यही कश्मकश दिन रात है रहती। करते हैं आज भी अनगिनत प्रयास जिसकी कोई गिनती भी नहीं होती। 4:42

मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, हर ख्वाब की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब सारे, सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाए ख्वाब सारे, ये भी सिर्फ एक ख्वाब ही है। पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता। बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता। बाकी सभी को अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे, ये मुमकिन नहीं। हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे, ये मुमकिन नहीं। हर ख्वाब की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही दिन में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। भारत की वर्ष 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में भाग लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग

0: तीन मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र में भारत को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरल, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज और चमक के साथ वर्षा की संभावना है। दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट में भारत फाइनल में पहुंच गया है। पहले सेमीफाइनल में कल भारत ने बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The 18th BRICS Summit will get underway at Bharat Mandapam in New Delhi tomorrow, with the national capital putting its finishing touches in place for the grand event. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa and the UAE. The theme of India's Chairship 2026 is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. World leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and Prime Minister of Ethiopia Abiy Ahmed Ali will participate in the summit. Brazil will be represented by Foreign Affairs Minister Mauro Vieira, Saudi Arabia's Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan Al Saud will also participate in the summit. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim and Vietnamese Prime Minister Le Minh Hung are the other heads of the state who will attend the summit. United Nations Secretary General Antonio Guterres, Director General of WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus and President of New Development Bank Dilma Rousseff are among the heads of international organizations who will participate in the event. Prime Minister Narendra Modi is likely to hold bilateral talks with Russian President Vladimir Putin today. The President of Russia and Foreign Minister of Brazil arrived in the national capital last night to participate in the summit. The President of South Africa is set to arrive this morning. Presidents of Iran, Indonesia, Egypt, Philippines and Burundi, Crown Prince of Abu Dhabi and Prime Ministers of Malaysia, Ethiopia,

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

आज के इस कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूं, सिर्फ मैं ही हूं, आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। आइए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल है एक प्यार का नगमा है।

सोच समझ कर लीजिए फैसले, सोच समझ कर लीजिए फैसले, पर सिर्फ सोच विचार ही ना कीजिए। समय के हिसाब से चलते रहिए, पर जब समय आएगा तब चलेंगे, ये विचार बिल्कुल ना कीजिए। देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए, देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए, सिर्फ सोच विचार में जीवन व्यर्थ ना करिए। 5:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

अक्सर सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर बहुत ही परेशान करती हैं ना भूलने की ये आदतें। कुछ चीज़ें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली रखना चाहिए। कुछ चीज़ें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली रखना चाहिए। फुल हो जाए मेमोरी तो फ़ोन और कंप्यूटर भी ठीक से काम नहीं करते। 5:24 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

सपने हमेशा थोड़े बड़े ही रखिए, सपने हमेशा थोड़े बड़े ही रखिए, बड़े पूरे ना भी हुए तो छोटे सपने तो पूरे हो ही जाएंगे। हिमालय चढ़ने का प्लान रखिए, हिमालय चढ़ने का प्लान रखिए, हिमालय ना भी चढ़ पाए तो कोई ना कोई छोटा पहाड़ तो चढ़ ही जाएंगे। 5:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।